0: धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
4: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
5: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
2: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: नेशन का फन स्टेशन, फनेशियर रेडियो।

नेशन के फन स्टेशन फनिशर रेडियो पर दोस्तों आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनिशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरेवन। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है, मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनिशियास नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। और आज के इस 2 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में आपको गाने सुनवा रही हूं ऐसे विच हैज द बेस्ट इंट्रो म्यूजिक। जी हाँ, बहुत ही कमाल के गाने चल रहे हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के, बेस्ड ऑन द थीम। थीम ऐसी है, फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसे गाने, हिंदी गाने आपको सुनवा रही हूँ विच हैज द बेस्ट इंट्रो म्यूजिक। सो चलिए विद दैट आपको लेकर चलती हूँ इस गाने की तरफ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, और आई एम श्योर अगर आप शाहरुख के फैन हो तो ये आपकी भी फेवरेट मूवी होगी। लेट्स लिसन टू इट।

बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है दोस्तों, उदित नारायण और रेखा याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवीज ऑफ शाहरुख खान, काजोल एंड रानी कपूर। ऐसे कोई नहीं होगा जिसने ये मूवी देखी नहीं होगी और देखने के बाद पसंद की नहीं होगी। क्या बात है भाई, ऐसे मूवीज आजकल बनना बंद हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज वी शुड साइन अ पिटिशन टू करण जौहर की ऐसे मूवीज फिर से बनाना शुरू कर दीजिए। वेल दोस्तों, आज की तारीख है 12th of July 2026। तो आपको बता देती हूँ डालस के बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम लाइव। विशाल एंड शेखर, द डुओ बिहाइंड सम ऑफ द बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डालस ऑन संडे जुलाई 12th। जी हाँ, जो कि आज हो रहा है या फिर होने वाला है एट द कर्टिस कलवेल सेंटर गार्लैंड। टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट kashpatelproductions.com। तो अगर आपने टिकट्स ऑलरेडी ले ली है और आप ऑलरेडी वेन्यू पे पहुंच चुके हो, कूडोस टू यू। बट अगर आपको जाना है, जिन्होंने अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं, आप kashpatelproductions.com पे जाकर आपकी टिकट्स ले सकते हैं। यू कैन यूज द कोड फन एशिया टू गेट अ 30% डिस्काउंट। वेल दोस्तों, ऐसे गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ विच हैज द बेस्ट इंट्रो म्यूजिक इन द शुरुआत ऑफ द सॉन्ग। तो चलिए विद दैट आपको लेकर चलते हुए इस गाने की तरफ, और आने वाला है उसके बाद आपके लिए एक अमेजिंग सा गिव अवे।

वेल, वादे के मुताबिक दोस्तों मैंने आपको कहा था कि लेकर आई हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सा गिव अवे। तो आपको बता देती हूँ दैट हियर इज योर चांस टू विन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैंस इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड। It is 100% pure vegetarian, made with fresh, authentic flavors, crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian favorites, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly option, visit San Idli Veg Restaurant, which is located at the highway of 121 and Custer. तो दोस्तों भाई अभी आपको करना क्या है, आपके सामने एक अंतरा मुखड़ा राउंड का अंतरा मैं पेश करूंगी और आपको अंतरा सुन के गाना कौन सा है पहचानना है और उसका मुखड़ा मेरे लिए गाना है। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। मैं चूज करने वाली हूँ दो विनर्स। जी हाँ, अंतरा एक ही रहने वाला है और विनर्स रहने वाले हैं मेरे दो। तो अगर आपने मुझे मेरे अंतरा मुखड़ा राउंड के सेगमेंट का सही सही जवाब दिया और सही सही मुखड़ा पहचाना तो आप जीत सकते हैं सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से वन डोसा ऑफ योर चॉइस एंड वन फिल्टर कॉफी। तो चलिए भाई, आपके लिए जो मैं अंतरा पेश करने वाली हूँ वो अंतरा कुछ इस प्रकार का है, गौर से सुनिएगा। और हमारा जो नंबर है 9722355555 अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए। अंतरा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। देखो चाहे जिसको कुछ कुछ तुझ

9722355555 है स्टूडियो का नंबर। आप ये गाना सुनिए, तब तक मुझे आप कॉल कीजिए।

Beautiful. Once again, a very, very beautiful song in the voice of Udit Narayan ji and Anuradha Padwal ji from the movie Mann. वेल दोस्तों, गाने पे जाने से पहले आपके लिए लेकर आई थी एक गिव अवे फ्रॉम द सैन इडली रेस्टोरेंट और आपसे आपके लिए गाया था मैंने एक अंतरा. अंतरा कुछ इस प्रकार का सा था. गौर से सुनिएगा फिर से एक बार. देखो चाहे जिसको कुछ कुछ तुझसा.

एंड दिस वॉज द सॉन्ग आ भी जा। मुझे मेरे दो लकी विनर्स मिल गए हैं, श्रेया एंड अभिषेक। कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से ये गिव अवे। तालियां आप दोनों के लिए। हाँ, बल्ले बल्ले कर दिया है आप दोनों ने। वेल, ये गाना इतना ब्यूटीफुल है, बट ये गाना अभी चलाने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको ये गाना ब्रेक पे आने के बाद, ब्रेक से आने के बाद सुनवाऊंगी। तो तब तक के लिए आप ये वाला गाना सुन लीजिए, और इसके बाद हम जाने वाले हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और आने के बाद आपको आ भी जा गाना सुनवाऊंगी।

0: जीनी
1: हुकम मेरे आका,
0: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
1: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
0: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
1: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
0: और एंटरटेनमेंट,
1: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
0: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
1: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: बेटा 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं।
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
15: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Chop Tower Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury or excitement, sub ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:34, बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। और आज हमारे शो में एक बहुत ही अमेजिंग अनोखी सी थीम चल रही है। ऐसे बॉलीवुड के गाने आपको सुनवा रही हूँ जिसमें इंट्रो म्यूजिक है, जिस गानों की शुरुआत अमेजिंग इंट्रो म्यूजिक से होती है, ऐसे गाने आपको सुनवा रही थी। तो चलिए ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा अंतरा मैंने सुनवाया था फ्रॉम द मूवी सुर, तो वो गाना भी अभी सुन लेते हैं। एंजॉय दिस ट्रैक।

कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो एंड तक सुना ना जाए उनको, तो माय गॉड ऐसा हो जाएगा कि कुछ पाप हो गया बहुत बड़ा। ऐसा ही ये गाना है, क्योंकि एंड तक, अंत तक इस गाने का जो म्यूजिक है वो इतना प्योर है, इतना ब्यूटीफुल है। लकी अली और सुरीधि चौहान की आवाज़ में सुने थे दोस्तों आप ये गाना, टेकन फ्रॉम द मूवी सुर। आपको बता देती हूँ दैट देर इज अ ब्रेकिंग न्यूज ऑन page 3। डालस हैज गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121। page 3 इटली वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर। कबाब्स है यहाँ पर, चाट है, फ्यूजन बाइट्स है, मॉकटेल्स है, वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच और डिनर, परफेक्ट फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चीजेस। विजिट page3eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स।

ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट दोस्तों, और इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 54 मिनट्स पास्ट 7। यही कहूंगी वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे इसी थॉट के साथ और कहती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड डैलस एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड।

Hello, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. Beautiful weather out there today, right? 80 degrees in July, वो भी डैलस में. हमें तो यार ऊपर वाले को थैंक यू बोल देना चाहिए यार, क्योंकि इट्स बीन क्रेजी लास्ट वीकेंड. एंड ऑफ कोर्स अभी थोड़ी सी बारिश की एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज दैट इज गुड. वी डू नीड अ लिटिल बिट ऑफ रेन इन नॉर्थ टेक्सास, व्हिच इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड. एंड ऑफ कोर्स जुलाई का महीना चालू हो चुका है. आई होप यू ऑल हैव योर प्लान्स रेडी, बिकॉज हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलरेडी गॉन. अगर आप भी मेरे जैसे हो जिन्होंने पूरा ईयर प्लान किया था और वुप 6 के 6 महीने पूरे गए, don't worry, we have the next 6 months available to us to ensure that all our goals and objectives are achieved. Behrhal, we want to make sure that all the amazing music that we are playing, we're continuing to play that. Or agar aapke paas koi songs hai, if you have any requests, let us know. 972-235-5555 is the studio ka number. You can also follow me on social media, on Instagram, Facebook, TikTok. DMs are always open. Prem Joshi Podcast. PREMJOSHI Podcast. सभी हमारे loyal listeners को तो पता ही है कि ठीक 8 से लेकर 9 बजे तक हम गाने बजाते हैं from the albums and not from the movies. So let us know your pop songs and we will play them here on the airwaves of Phonesia. पहला गाना मुझे संगीता ने DM कर दिया था और दूसरा गाना भी उन्होंने बोल दिया था. मेरे बैक टू बैक दो रिक्वेस्ट है. तो संगीता, here's your second song as well. आंखों में तेरा ही चेहरा.

दीवाना। दिस वॉज सच एन आइकॉनिक सॉन्ग यार, मैं जेंजीज को कैसे समझाऊँ ये गाना कितना बड़ा कल्ट क्लासिक था, ऑन चैनल वी, ऑन एम टी वी, ऑन रेडियो स्टेशंस, एंड ऑफ कोर्स हम ये इसकी कसेट्स लेते थे, इसकी सीरीज लेते थे। 90s में दिस सॉन्ग वॉज अ वायरल बिफोर देयर वर थिंग्स कॉल्ड एज वायरल। सो इसमें आपको बहुत ही यंग शाहिद कपूर देखेगा एंड ऋषिता भट हुज ऑल्सो एन एक्ट्रेस देखेगी इस पे। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम अमेजिंग अमेजिंग चाइल्डहुड मेमोरीज। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने डालस वासियों को बोला पॉप सेगमेंट है, लोगों ने बैक टू बैक फोन कर दिए और रिक्वेस्ट दे भी दिए। यू गाइज मेक माई जॉब सो ईजी बिकॉज यू लव दिस शो, यू लव दिस सेगमेंट। थैंक यू सो मच। Please follow us on Instagram, Facebook. It's called Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. We talk to some amazing subject matter experts from immigration, health, law, fitness, lifestyle, everything. We talk to everybody, you know, whatever's important to us when we live in America. So, next gana, mujhe Divya ne recommend kiya, and Divya is one of those amazing, amazing listeners who's always recommended me beautiful songs, right? And this is my personal favorite. Logo lagta hai yaar Prem baayega to Tanha Dil bajayega hi, par nahi yaar, is bar Divya ne mujhe call karke bola hai Tanha Dil bajao. So yeah, Tanha Dil by the legendary iconic Shaan.

मैं सही में बोलूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लाइन हमारे लिए ही लिखी है जो भारत छोड़ के यहाँ पे आए हैं। आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। दो साल पहले आए कुछ लोग, कुछ 5 साल पहले आए, कुछ 10 साल, कुछ 20 साल पहले, बट किसी को पता नहीं। वी ऑल लिव बाय ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे इन अमेरिका, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट इन स्टोर, राइट? बट वी गो विथ द ऑप्टिमिज्म, वी गो विथ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव, विथ ऑल द स्किल सेट्स वी हैव, एंड जस्ट गो विथ द फ्लो। अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप हिम कमिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरानी जीन्स रिकमेंडेशन आई है मुझे, आई कुडंट गेट द नेम, बट हियर इज योर सॉन्ग।

Oof, so many amazing memories revived. Thank you so much for recommending this beautiful, beautiful song. Ladies and gentlemen, keep them coming. 972-235-5555. And of course, if you cannot pick up the phone and call us, DMs are always open. Ladies and gentlemen, follow us on Instagram, Facebook, TikTok, wherever you are, we are there. Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. You can always message us the song if you're recommending it to your special one. Unka bhi naam dal dijiye. हम एक शाउट आउट दे देंगे, फेमस कर देंगे उनको रेडियो पे. 972-235-5555. वानी ने मुझे अभी मैसेज किया है और बोला है ये गाना प्लीज बजाइए. एंड मैंने बोला वानी को, यार ये गाना मेरे पास मेरे लिस्ट में ऑलरेडी था, क्या बताओ यार. इट्स वन ऑफ दोज आइकॉनिक सॉन्ग्स, हो गई है मोहब्बत, जो ये सेगमेंट में दो या तीन बार एक बार बजी जाता है यार, मुझे ऐसा लगता है दो तीन हफ्ते में एक बार. अगर वानी की तरह आपके पास भी से गाने हो तो लेट अस नो.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
8: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. वैसे हमारे अब ये सेगमेंट चल रहा है हमारा पॉप सेगमेंट जहाँ पे गाने बज रहे हैं फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज. सो थोड़े सारे रिक्वेस्ट जो हमें आ रहे हैं वो हमें डिफ्लेक्ट करने पड़ रहे हैं कि भैया वो सारे गाने जो है वो जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो हम बजाएंगे, डेफिनेटली बजाएंगे, पर 9 बजे से बजाएंगे. सो 9 से लेकर 10 बजे तक हम ब्लॉक बस्टर सॉन्ग्स बजाते हैं. बट फॉर नाउ वी आर प्लेइंग ऑल द पॉप सॉन्ग्स. अभी मुझे बहुत ही एक अमेजिंग रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम सृष्टि रिजल. सो आयुष जो उनके हस्बैंड है उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला है सृष्टि लव्स लकी अली सॉन्ग, देन ऑफकोर्स वी विल प्ले दैट सॉन्ग बिकॉज देर इज नो पॉप सेगमेंट विदाउट अ लकी अली सॉन्ग. सो ये बहुत ही वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स. सो एवरीबडी सेज दैट ओ लकी अली है तो ओ सनम फेवरेट होगा, या है, पर उससे भी ज़्यादा मुझे अगर कोई गाना पसंद है उनका वो है कितनी हसी जिंदगी है ये. Have a listen, ladies and gentlemen. You will enjoy this.

दिस इज सच एन अमेजिंग सॉन्ग यार. अभी उस अगर आपको इसका वीडियो याद नहीं तो इट इज पिक्चराइज्ड ऑन आर वेरी ऑन मलाइका अरोरा. एंड ट्रस्ट मी यार, शी स्टिल लुक्स द सेम. आई मीन दिस सॉन्ग इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 years ओल्ड. एंड वॉट वॉट एज रिवर्स टेक्निक इज शी यूजिंग, एवरीबडी शुड नो यार. बट या अमेजिंग सॉन्ग बाय लकी अली. अभी हमें मेरी बात हुई राधा से, उन्होंने बोला मेरे पति की बहुत इच्छा हो रही है डूबने की. मैं बोला डूबने की कहाँ, डूबने की भी इच्छा हो रही है. सो डूबने की मतलब आपके म्यूजिक में डूबने की इच्छा हो रही है बिकॉज ऑफ द अमेजिंग प्ले लिस्ट दैट वी आर प्लेइंग राइट नाउ. बट इट इज ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द अमेजिंग लिसनर्स ऑफ आर डैलस वासियो के क्या गाने दिए हैं लोगों ने यार. मैंने सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया, प्लीज पॉप सेगमेंट के गाने बजाइए, नॉट फ्रॉम द मूवीज. एंड लोगों ने बैक टू बैक रिक्वेस्ट किए. फेसबुक इंस्टाग्राम पे डीएम्स तो आ ही रहे, हमारे हॉटलाइन पे भी आ रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. और अगर राधा की तरह आपके पास भी ऐसे गाने हो तो लेट अस नो यार, 972-235-5555. तो हाँ, डूबने की हम बात कर रहे थे तो वो गाना याद आया, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी. मोहित चौहान, खेम त्रिवेदी, अतुल मित्तल, सिल्क रूट द बैंड का गाना, बूंदे करके एल्बम थी ये, ऑलमोस्ट 20 years old एंड इट स्टिल फील्स लाइक इट्स ब्रांड न्यू.

नाजा बेवफा, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग. थैंक यू सो मच राधा. और राधा की तरह आपके पास भी ऐसे अमेजिंग सॉन्ग्स हो तो लेट अस नो योर जैम. 9722355555. 15 मिनट और है, दो तीन गाने और डाल सकता हूँ मैं बिफोर वी कॉल इट अ नाइट फॉर दिस सेगमेंट. एंड ऑफकोर्स वील मूव टू द ब्लॉक बस्टर सेगमेंट, जहाँ पे हम बैक टू बैक हिट्स बजाएंगे फ्रॉम द 90s, 2000s एंड इवन टूडे. नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है मोनिका ने. मैं अभी मेरी बात हुई मोनिका से और उन्होंने मुझे लाइन बोल दिया पूरा का पूरा एक गाने का. तो हमको मेरे को लगा ये कौन सा गाना है, ये फिर पता चला यार वो तो लकी अली का ओ सनम सॉन्ग है. सो आई वाज आई आई टुक लाइक 2 or 5 seconds टू डीकोड द नेम ऑफ द सॉन्ग. सो ऑफकोर्स सेकेंड सॉन्ग ऑफ लकी अली. यार ये सेगमेंट ऐसा है ही यार, लोगों को इनकी याद बहुत आ जाती है व्हेन वी कॉल और व्हेन वी से दैट वी आर प्लेइंग पॉप सेगमेंट सॉन्ग्स. लकी अली का दो तीन गाने आ ही जाते हैं. ओ सनम एंड द एल्बम नेम इज सुनो. इट्स ऑलमोस्ट 3 decades व्हेन द सॉन्ग वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड. हियर वी गो.

भैया लोग बोलते हैं लकी अली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ पॉप सेगमेंट, पर हमारे सोनू निगम भी पीछे नहीं है यार. प्रियंका ने रेकमेंड किया ये आइकॉनिक गाना टू फ्रॉम सोनू निगम, एंड ऑफ कोर्स बिडू वाज द म्यूजिक प्रोड्यूसर हु हैज मेड सम आइकॉनिक आइकॉनिक पॉप हिंदी पॉप सॉन्ग्स.

थैंक गॉड इस रेडियो में कैमरा नहीं है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स नॉट अ विजुअल मीडियम, इट्स जस्ट एन ऑडियो जहाँ पे आप सिर्फ मुझे सुन सकते हो, क्योंकि अगर देख पाते तो आप लगते ये प्रेम कितना गंदा डांस करता है यार। यार लेडीज एंड जेंटलमैन, द यू गाइज आर मेकिंग मी डांस यार। एक तो बैक टू बैक अमेजिंग सॉन्ग्स हमारे डैलस वासियों ने बताया यार, कीप हिम कमिंग, दिस इज अमेजिंग। आई एम गेटिंग ऑल द DMs, आई एम रीडिंग ऑल योर मैसेजेस, थैंक यू एवरीबडी हु इज लाइकिंग इट। Please make sure you go on social media and follow us, because that makes us amazing, because humko aisa lagta hai ki yaar logo ko pasand aa raha hamara kaam. It's called Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. We talk to some amazing subject matter experts from health, law, immigration, finance, lifestyle, and on and on and on. Next gana. अनिका ने रेकमेंड किया है, अनिका विद अ के। अनिका जी ने हमें बोला है, गोरी तेरी आंखें कहे बजाइए, फ्रॉम लकी अली एंड द आइकॉनिक कविता कृष्णमूर्ति।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हम अभी सारे गाने जो बजा रहे हैं हम फ्रॉम एल्बम से बजा रहे हैं, फ्रॉम नॉट फ्रॉम द मूवीज. तो अभी हमारी सूरज से बात हुई जिन्होंने एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग हमें रेकमेंड किया. दूसरा अभी आइकॉनिक भी उन्होंने ही रेकमेंड किया है. वैसे लोग मुझे कहेंगे अरे यार ये पॉप सॉन्ग थोड़ी है यार जो अब आप बजाने वाले हो, वो तो यार एल्बम वाला है बट पॉप नहीं है. बट इफ़ यू रिमेंबर द अर्ली ईयर्स ऑफ द 2000, देयर वॉज अ वेव ऑफ रीमिक्सेस, राइट? सो या डीजे अकील, वैशाली सामंत और बहुत सारे ऐसे आए थे जिन्होंने पुराने 70s और 60s के गाने को थोड़ा सा पॉप वर्जन करके अपलिफ्ट किया एंड धूम मचा दी थी यार. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जेंजी को कैसे समझाऊं कि ये गाने कितने वायरल हुए थे, एंड दिस वॉज प्री इंटरनेट, राइट? जैसे काटा लगा, तू तू है वही, तो उनमें से ही अभी सूरज ने मुझे रेकमेंड किया है यार ये वाला बजा दीजिए. सो यस, द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस सेगमेंट, तू तू है वही दिल ने जिसे, फ्रॉम डीजे अखियो.
1: हेलो,
2: अकेले हो, दोस्ती करोगे?
0: यार ये जो मोनोलॉग है पहले का वो मैं हटा देता हूँ यार, गाने पे फोकस करते हैं.

0: हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया PREMJOSHI पॉडकास्ट, प्रेम जोशी पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
13: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
16: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meedha sa sukoon.
15: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
16: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, Harbhai Superhit.
17: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. Beautiful weather out there. Finally, we have a day when the temperature isn't 95 or 105. But of course, August ka pura mahina bacha hai. July ka bhi pura mahina bacha hai. So yes, I'm expecting a little bit of crazy days ahead. But behral, jo abhi hai, usko enjoy karte hai. प्लीज कीप एम कमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. अभी हमारा ब्लॉकबस्टर सेगमेंट है. जो लोग ने मुझे फ़ोन किया और सारे मूवीज़ के गाने बताए पिछले सेगमेंट में जो मैं नहीं बजा पाया, यू कैन लेट अस नो नाउ एंड वी विल प्ले देम राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया 972-235-5555. एनी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग वी विल प्ले देम राइट हियर एंड विल ऑल्सो गिव यू अ शाउट आउट. अभी नेक्स्ट गाना जो हम बजा रहे हैं वो मुझे राहुल ने रेकमेंड किया है. उन्होंने मुझे डीएम करके बोला तम्मा तम्मा वो धुरंधर वाला गाना बजाइए यार. मैंने बोला यस एब्सोल्युटली. बप्पी लहरी एंड अनुराधा पडवाल का आइकॉनिक सॉन्ग तम्मा तम्मा.

ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। सृष्टि ने मुझे रेकमेंड किया है, तरस गाना है, वो बजाइए। मुझे यार 2 मिनट लग गया यार, ये तरस कौन सा गाना है? फिर ऑफ कोर्स मैंने जब ढूंढा तो मुझे पता चला यार दिस शी हैज़ गॉन वायरल, एंड ऑफ कोर्स द सिंगर इज ऑफ कोर्स आइकॉनिक जैस्मिन सैंडलेस। उन्होंने कितने सारे कॉन्सर्ट किए, आई मीन शी वॉज ऑन वर्ल्ड टूर आई थिंक अर्ली पार्ट ऑफ 2025 एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ 2026। बट ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड ऑन शर्वरी। आई थिंक शी हैज नेल्ड इट मैन। आई मीन अल्फा मूवी, मेरे में तो दम नहीं है वो मूवी देखने का थिएटर में। आप लोग में से किसी ने देखा होगा तो मुझे बताइए, कॉल करिए और मुझे बताइए कैसा रहा वो मूवी एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है यार वो मूवी देखने की। बट आई कैन से मैंने जो भी देखा है सोशल मीडिया पे, ऑन द रील्स एंड ऑन द ऑन ट्विटर, शर्वरी हैज़ ओवर शैडोड आलिया भट्ट। इट्स नॉट ईजी टू डू दैट बिकॉज आलिया इज सच अ बिग एक्ट्रेस नाउ बिकॉज ऑफ ऑल बैकिंग एंड एवरीथिंग। शी डज हैव टैलेंट इज वेल ऑब्वियसली, बट every interview that I've seen of these two girls, I mean, every eyeball is on Sharvari. She's so iconic these days and I think she's going to be a big superstar. I genuinely feel that. Here's your song, Srishti, Taras. Movie ka naam waise Munjia hai. Maine to ye movie pehli baar suni hai. Gaana to maine bahut baar suna hai ye, kyunki bahut famous hua hai ye song, but Munjia karke movie hai, Taras karke ye gaana hai. Have a listen, ladies and gentlemen.

यार बहुत ही इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट आ रहे हैं. आई मीन देर नॉट बैड रिक्वेस्ट बट इट्स दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट. जब अभी हमने प्रिंस का गाना बजाया, आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द लास्ट लाइक 2 or 3 years. किसी ने रिक्वेस्ट किया मुझे तो याद नहीं है यार. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप मी रियल हियर, इफ यू हैव रिक्वेस्टेड लेट मी नो, बट आई डोंट रिमेम्बर समबडी रिक्वेस्टिंग. एंड दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स, जब आतिफ असलम यूज टू सिंग क्वाइट अ फ्यू सॉन्ग्स इन हिंदी मूवीज. Of course, he doesn't sing anymore. But yeah, keep him coming. 972-235-5555 is the studio ka number. Abhi Ashutosh ne mujhe call karke bola hai ke raat ke 2:30 baje. Maine bola kya hua raat ke 2:30 baje? Arey nahi, gaane ka naam hai raat ke 2:30 baje. Fir mujhe Google karna pada aur pata chala yes, Kamine movie ka ye song hai. रात के 2:30 बजे. इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एंड लवली सॉन्ग, बट इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस आई हैव हर्ड, तो इसलिए थोड़ा मेरे को टाइम लग गया. सॉरी आशुतोष, बट हियर्स योर सॉन्ग.

I think Priyanka Chopra really nails the Marathi Mulgi character in all her movies, right? I mean, she does so amazingly. She's not a Marathi Mulgi, by the way. She's from Jamshedpur, Jharkhand se hai wo. And of course, she's born to physicians in the Indian Army. And she's lived everywhere, right? Bareilly, Lucknow, Delhi, Pune. And she's also attended school in Massachusetts in US. But of course, she was the काशीबाई इन बाजीराव मस्तानी. देन फिर हमने अभी कमीने का गाना बजाया, जहाँ पे वो स्वीटी भोपे का उन्होंने रोल किया था. दैट वॉज इन 2009. एंड देन एक और मराठी मूल की कैरेक्टर वॉज काली गावड़े. दैट वॉज इन अग्निपथ विथ ऋतिक रोशन. सो शी हैज डन सम एंड शी इज मास्टर्ड दैट कैरेक्टर. सो आई रियली रियली लाइक. एंड शी इज ऑफकोर्स आइकॉनिक, द प्रियंका चोपड़ा जोनस. नेक्स्ट गाना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. संडे रात के 9:30 बज चुके हैं, लोगों की मोस्टली पार्टी खत्म हो गई यार, क्योंकि लोगों को मंडे का ऐसा डर छाया रहता है, एटलीस्ट फ्रॉम संडे 7 PM. बट ऑफ कोर्स हमारे शो का यही मोटो है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे दे, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दे दे. वी प्ले सम अमेजिंग सॉन्ग सो दैट यू आर रेडी फॉर योर वर्क वर्क वीक.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभाल लेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

अजय अतुल का पावरफुल कॉम्पोजिशन टेकन फ्रॉम द सुपर डुपर हिट मूवी अग्निपथ पिक्चराइज्ड ऑन ऋतिक रोशन एंड प्रियंका चोपड़ा. लेडीज एंड जेंटलमैन, दो तीन और रिक्वेस्ट बिफोर वी कॉल इट अ नाइट. थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी. 85% ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी हैव प्लेड इन द लास्ट टू आवर्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय आवर अमेजिंग अमेजिंग लिसनर्स. कीप हिम कमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन.

Welcome back, ladies and gentlemen. This segment is brought to you by Chandigarh Bites. अगर आप लोग ने नहीं चेकआउट किया है ये रेस्टोरेंट तो आई हाईली रिकमेंड यू डू दैट एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन मोर रीजन टू डू दैट बिकॉज देयर इज अ सिंपल गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. सिंपल क्वेश्चन, उसका एक होगा सिंपल आंसर एंड यू विल विन $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 डाइन इन एट चंडीगढ़ बाइट्स. ओके, $10 ऑफ a $50 bill and it's located at McDermott Drive in Allen, so very much close by to where we live. Let us know the movie name jo main ye gana bajane wala hu, ye jo desh hai tera, theek hai, AR Rahman ki music hai, Shahrukh Khan pe picturize ki gayi hai. Aapko sirf batana hai ki ye movie ka naam kya hai. Okay, $10 off on $50 on Only Dine-In at Chandigarh Bites. This is the giveaway. And this is our Bollywood quiz, ladies and gentlemen. Just let me know the movie name of the next song. 972-235-5555. 972-235-5555. Name of the movie and win this amazing giveaway.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हफ्ते के हमारे गिव अवे के विनर है स्नेहल। उन्होंने 30 सेकंड्स में फोन करके जीत लिया है इस बार का गिव अवे। बट नाराज मत होइए, हताश मत होइए, वी डू दिस एवरी सिंगल वीकेंड। ऑफ कोर्स आवर स्पॉन्सर्स चेंज, बट वी ऑलवेज प्ले दिस बॉलीवुड क्विज। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ट्यूनिंग इन एंड प्लेइंग द बॉलीवुड क्विज विद ऑल ऑफ अस। लेट अस नो योर जैम। इफ यू हैवंट प्लेड अ सॉन्ग दैट यू लाइक, Please call us at 972-235-5555. Next song, हमें राजेश ने कॉल करके रेकमेंड किया है सेल्फी ले ले ले का गाना बजाइए बजरंगी भाईजान से। So here's your song, राजेश।

0: ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दो तीन रिक्वेस्ट आ चुके हैं, 10 बजे के पहले सारे रिक्वेस्ट बजाना चाहूंगा, सो आई वोंट बी एबल टू प्ले ऑल द सॉन्ग्स, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, नो मोर रिक्वेस्ट फॉर द नाइट. I do want to mention about PMJ Jewels. They are the sponsors of this segment. Dallas, the wait is over. PMJ Jewels is now coming to Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Explore stunning gold, diamond, and bridal collections for every celebration and milestone. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatamanini. PMJ is a name trusted by generations. Visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells you story. Abhi hame Madhuri ne recommend kiya hai Cocktail 2 ka gana. So yes, Bandhu 2.0.
1: This is a gandhe song, yeah.
2: Dancing is pagal hai.
1: Kyun?
2: What? Troll ho jayenge hum log. Troll.
1: But why? It's iconic.
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने गए, छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई.
1: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी.
2: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought to you by Club Phonasia.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत यही।

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
2: Hi I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US 104.9 FM Fun Asia Radio

0: the revolution and let the good times roll.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
5: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तेरा फैन हूं।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: हे अलेक्सा, डू आई हैव एनी रिमाइंडर्स टुडे?
3: योर रिमाइंडर फॉर टुडे: कंप्लीट ग्रेफिटी वॉल।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Bad in the-

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Funny Asia Radio.

हो यकीन, इतनी क्यों है बता तू हसीन।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: रुको जरा, सबर करो।
4: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। Stay tuned to Phonesia.

0: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.
1: हर एक सीढ़ी में स्कट करेंगे, हर एक सीढ़ी में

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
5: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
6: KZMP 104.9 FM, कीप लिसनिंग टू फन एशिया।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में, आपके मन में,

Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The lines are open and I'm taking your calls. 972-235-5555 is the number in the studios. We'll take your requests, your dedications, your comments, feedback, suggestions, anything you'd like to talk about this lovely Monday morning. It's the 13th of July today, and it is a rather rainy day, and it's raining all over. Some places it's heavy, some places not so much. 2 to 4 inches have already fallen, and we should have a little more coming up here, mainly in Denton.
1: Heere moti maina chahu.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DF W Stores, Mid Cities, Irving और Murphy में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने traditionals और Texan favorites. HEB, here everything is better.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: On the 13th of July 1985 at the Wembley Stadium in London, Prince Charles and Princess Diana officially opened Live Aid, a worldwide rock concert organized to raise money for the relief of famine-stricken Africans. It continued at the JFK Stadium in Philadelphia, where Joan Baez famously kicked it off by telling the crowd, "This is your Woodstock, and it's long overdue." The benefit concert Live Aid, held simultaneously at Wembley Stadium in London and JFK Stadium in Philadelphia, drew an estimated 1.5 billion television viewers and raised millions of dollars for famine relief.
1: What?
2: Yep. I've been thinking about it. I'm thinking about it a lot. And I think we should just do it.
1: You're serious?
2: Yeah.
0: On What's today's up? Date in 1990, the romantic thriller Ghost, starring Demi Moore, Patrick Swayze, and Whoopi Goldberg, opens in theaters across the U.S. The film about a woman who communicates with her murdered boyfriend through a psychic, a box office hit, and received multiple Academy Award nominations, including Best Picture, Best Screenplay. Goldberg, who played the psychic, won an Oscar for Best Supporting Actress.
1: People say I love you all the time, and it doesn't mean anything.
0: American businessman George Steinbrenner, who, while principal owner of the New York Yankees, became one of the most controversial personalities in Major League Baseball, died on today's date in 2010 at the age of 80. The Yankees owner immortalized in the sitcom Seinfeld. Outrage and saddened after the acquittal of George Zimmerman, the Florida man who killed a black teenager in 2012 in Oakland, California, resident Alicia Garza, posts a message on Facebook on today's date in 2013. And her post contains the phrase, "Black Lives Matter," which soon becomes a rallying cry and a movement throughout the U.S. and around the world. Black Lives Matter originated on today's date in 2013. And in 2015, Texas State Trooper Brian Encinia pulls over a 28-year-old black woman, Sandra Bland, for failing to signal a lane change. After a heated encounter, he arrests her and takes her to a nearby jail. 3 days later, she's found dead in her cell, apparently by suicide, and the circumstances surrounding her death lead many to question how she could end up losing her life following a minor traffic stop. And her case drew international attention over the treatment of black people by white police officers and became a painful case that was cited in the Black Lives Matter movement. Theresa May, the Conservative Party leader, became the second woman Prime Minister of the UK, replacing David Cameron, who resigned after the country voted to leave the European Union on today's date in the year 2016. Richard Simmons died on today's date in 2024, 2 years ago, in Los Angeles, California, the American aerobics instructor and fitness guru. And 2 years ago on today's date, President Trump.
3: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
4: Arre relax, sab tumhara hi to hai.
3: Sach? Ya phir court decide karega?
4: Wait, what?
5: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions court leta hai.
6: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon, unki mehnat ko protect karne mein. The right way with estate planning.
5: Agar aapke paas sirf will hai ya kuch bhi nahi hai, to ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरोइन हूं।
3: I've been researching retirement planning.
11: Oh really? Where?
3: Google, YouTube, a guy on TikTok.
11: Or you could just talk to WealthTactic.
3: What's the difference?
11: They create a real retirement strategy, not just investments, but a plan for when your income stops.
5: WealthTactic, because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
0: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
13: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
0: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: Mamu, देखो क्या हो गया?
15: ओ क्या हो गया?
14: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
15: ओए जर्मन का कमाल है।
14: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
15: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
16: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

0: अगर इन पहाड़ों को कोई पार करता चला जाए तो यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूसिया होते हुए बुल्गारिया के उस छोटे से गांव तक पहुंचा जा सकता है जहाँ उल्का नाम की लड़की का घर है। तुम चलो ना मेरे साथ बुल्गारिया।
1: शिवा हिमालय के सिवा कहीं और जी नहीं पाएगा।
0: सो दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तुम बुल्गारिया नहीं आ सकते, मैं यहां नहीं रह सकती।
1: मुलाकातों को दिनों रातों से क्यों गिना जाता है, सांसों से क्यों नहीं? अगर सांसों से गिना जाए तो लगेगा बहुत लंबी उम्र है, इस कम उम्र रिश्ते।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
1: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. Chahe Olympic style archery ho ya 10 meters indoor precision shooting. Focus, discipline, consistency. Frisco Precision Sports Academy, one and only in North Dallas. From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance-driven training, ages 8 and above.
4: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-1099.
5: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
6: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
8: हे तुमने कभी इंश्योरेंस लिया
9: लिया
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया
9: नहीं आया
8: मुझे भी नहीं आया आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
0: Visit www.sanadainc.com today.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं।
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं।
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं।
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, your growth, our strategy.
1: AG FinTechs, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, FunAsia Radio.
19: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show this morning. We will get you caught up and make sure that you are entertained with the music that you want to listen to, along with all the information you need to go take on this rainy Monday morning. It's the 13th of July.

0: Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in to your morning drive time special. And thank you for letting me into your cars and helping you drive to your destination as we get this week started for you. And it's, of course, starting with a very rainy Monday morning. We've already had 2 to 4 inches and more coming. If it's wet in your area, please give yourselves extra time to get to wherever you're headed. Hopefully to work. Some may be headed for maybe a fun day if the kids are off. But we'll keep you updated right here.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
2: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
2: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
2: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
8: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? यस, वी हैव लोन ऑप्शंस फॉर यू, सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। एंड 926-641.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: And that, ladies and gentlemen, is my show for today. Getting your week started on a rainy footing. I hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you every morning from 7 to 10. Me Too's coming on right after me. And you all continue listening to the Fun Asia Network right at 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
6: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
7: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
6: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच इट एक्सीड्स पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स सर्टिफाइड टीचर्स कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज ट्राई लुमिटी यू सी द डिफरेंस किड्स एजेस 5 to 13 कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को कॉल 972-666-1181 मेंशन फन एशिया गेट $100 ऑफ योर first month
9: please don't say your usual place again I'm tired of the same food
10: excuse me it's called being loyal
9: it's called being predictable
10: okay then let me surprise you let's go to neon cactus in fairview
9: and what's so special at neon cactus
10: went there with my office team last week mexican cuisine with global influences everything fresh wonderful flavors zabia halal options and plenty of great vegetarian choices too
9: not bad
10: happy hours monday to friday And amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus Fairview, Mexican cuisine with global influences.
11: जिंदगी एक रंगमंच है
12: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो हर कदम आपके साथ
8: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com
13: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ
14: इट्स लॉसन
13: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा
14: इट्स लॉसन
13: डैडी व्हाट इज द लॉ
15: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458 द ट्रेवल एक्सपर्ट्स लॉसन ट्रेवल
16: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
17: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: July 13th, लेडीज एंड जेंटलमैन, घड़ी में बजे हैं 10:14. दिस इज गपशप गली विद मी टू एंड होपफुली योर वीकेंड वाज फैंटास्टिक। और अगर ये हफ्ता शुरू करने में आप ड्रेड कर रहे हो बिकॉज ऑफ वर्कलोड, वी आर हियर टू रिलीव इट अ लिटिल बिट इफ म्यूजिक इज द प्लेस दैट यू फाइंड योर रिलैक्सेशन। सो लेट्स बिगिन वंस अगेन, दिस इज गपशप गली विद मी टू।

0: Talking about pehli baar, there is first time to everything, ladies and gentlemen, including going to your doctors. If you want to change your doctor because you're not happy with your doctor, may we suggest Passion Health Primary Care. And there are many reasons for you to start loving your doctor's visit. Kyunki agar aap ja rahe ho doctor ke paas, either it is about the annual checkup that you're thinking about, or maybe, you know, you have some health condition, SMA, you want your doctor to spend the amount of time that it seeks, right? और ऐसे में कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं होती at Passion Health Primary Care. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care is the name to remember. And it is a multidisciplinary care teams that you will find under one roof.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ.
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
10: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
0: It's honestly more music, more magic when you join hands in hands with us right here on Funation Radio 104.9 FM. ये है कपशप गली with me too. थोड़ी देर पहले 10 years old हिमांश का कॉल आया और उन्होंने रिक्वेस्ट की घुंगरू, ये जो विशाल शेखर का गाना है, ये गाना रिक्वेस्ट किया. तो आई हैड द ऑब्वियस क्वेश्चन दैट डिड ही एक्चुअली गो टू द कॉन्सर्ट yesterday. तो जवाब आया नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स को फ्री टिकट मिला था, इसीलिए दे वेंट. सो Here is free music for you to enjoy exclusively for Himanshu.

0: You are listening to your favorite destination for good vibes and great conversations, ladies and gentlemen. This is Gupshup Gali with me too, aur mere saath abhi on air judne wale hain a man who helps turn those home ownership dreams into actual reality for all of you. He's the CEO and the founder of Dream Home Mortgage, Mr. Hussain Panjwani. Ek trusted voice hai hamari community ke DFW Metroplex ke. To chale, tayar ho jaye aap. Kuch tips and advices that you get from Mr. Hussain Panjwani in the most layman's language for all of us, the people who are dealing with it for the first time, unke liye bhi aur jo kafi saalon se in sab cheezon mein interest lete aaye hain, business owner hain, entrepreneur hain, ya you know they are buying their second property and all of that, you know, but to understand it even better, there is a very good path for all of you, that stress free process for you at dreamhomemortgage.com. best loan programs hain inke paas, aur in sari cheezon ke बारे में हम बात करेंगे अभी इस वक्त इन दिस सेगमेंट दैट इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज मिस्टर हुसैन पंजवानी के साथ. आई एम सो रेडी टू गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग?
1: गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? आई होप यू हैड अ वेल रेस्टेड वीकेंड एंड आई होप ऑल योर लिसनर्स हैड अ वेल रेस्टेड वीकेंड.
0: आई एम श्योर, एंड विद द टर्न ऑफ द वेदर आई थिंक वी ऑल आर इन अ बेटर मूड. नहीं तो सुबह से वो गर्मी के कारण ना दिमाग भी थोड़ा गर्म हो जाता है. सो आज सबका आई थिंक थोड़ा बेटर स्टार्ट हुआ होगा, आई होप.
1: हम शादी के बाद हमारा दिमाग गर्म होना बंद हो जाता है, तो आई डोंट नो व्हाट दैट.
0: ऑल राइट, आई विल टेक दैट कि भाई हमारे हुसैन पंजवानी साहब जो है हमेशा उनकी आवाज से वो काम तो समझ में आता है. तो ठीक है, चलिए मान लिया कि शादी इज द मंत्रा. अदर देन बाइंग योर होम एंड यू नो बीइंग वेरी हैप्पी विथ योर परचेज, दिस इज अनदर फैक्टर दैट कैन मेक यू.
1: आई ऑलवेज सेड हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ.
0: बिल्कुल
1: सर जी, सिक्योरिटी हैप्पी तो सब हैप्पी.
0: बिल्कुल सर जी, बिल्कुल. Yes, so let's get into the conversation of buying home. Actually,
1: so that leads to that. हाँ. कि अगर वाइफ को हैप्पी रखना है, अगर अभी भी आप रेंट कर रहे हो,
0: जी,
1: तो थिंक अबाउट बाइंग अ हाउस. एंड अ वेरी सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इन दिस कंट्री अगर आप प्लानिंग करते हो, यू नो आई हैव क्लाइंट्स हु बाय 200,000 होम, 250,000 होम, एंड दे बाय 2.5 मिलियन डॉलर होम, जैसा बजट होता है प्लानिंग करते. एंड यू विल बी सरप्राइज, सम ऑफ देम एक्चुअली प्लान फॉर अ ईयर, टू ईयर्स. सम ऑफ देम हैड इश्यूज विद देयर क्रेडिट. आई हैव गिवन दिस एग्जांपल इन द पास्ट. आई हैड अ क्लाइंट इन अर्विंग जिसके साथ ऑलमोस्ट एक साल काम किए टू बिल्ड हिज क्रेडिट, एंड देन ही वॉज एबल टू बाय हिज हाउस इन हिज बजट, एंड ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड इन एडवांस कि हुसैन भाई मुझे क्लोजिंग पे इतने पैसे लाना है, एंड वी वर एबल टू प्लान अकॉर्डिंगली. Then I had a client in Houston, जिसके साथ हम almost year and a half काम किए. He filed two tax returns based on his income. वो time पे bank statement के programs नहीं होते थे. So you know, lot of people think हमारी credit खराब हो गई, it's the end of the world, हमने bankruptcy file किया, it's the end of the world. नहीं, in this country you have second chance and third chance. But you have to plan ahead because it is one of the biggest investments for us. It is because one of the biggest commitments. Monthly expense wise also. तो इसके लिए definitely some planning होती है, planning जाती है. And for that you should think about getting pre-approved first. The minute अगर आप अभी भी rent कर रहे हो, और the minute you think about buying a house, you need to first think without before stepping into the real estate market. Please get yourself pre-approved.
0: So that's your number one suggestion to anyone, even you know, sort of making starting their plans to buy a home. That's the number one thing to do. All right.
1: Definitely. I mean, in case आप सोचते हो कि मुझे घर लेना है, is it how possible it is? How is impossible it is? I have $20,000. Can I really buy a $300,000 home? कि ये लोग रेडियो पे आके बड़ी-बड़ी बात करते. Is it even possible to buy a house? Do I qualify? There are certain programs you can. There are means very aggressive programs, but उसके पहले ऐसा नहीं कि आपने सोचा कल उठ के घर खरीद लिया. You have to plan because, like I said, expense wise and term wise, 25 साल 30 साल की आपने

0: लोन कमिट कर रहे हो, आपका 30 to 40% पे चेक यू आर कमिटिंग टुवर्ड्स हाउस पेमेंट, तो
1: जी
0: यू हैव टू डेफिनेटली प्लान टुवर्ड्स दैट. बट
1: एब्सोल्युटली
0: अगेन आई मीन ऑनेस्टली एवरी फैमिली शुड ओन देयर होम दैट दे आर लिविंग इन. दैट्स माई ऑनेस्ट सजेशन.
1: Absolutely, sir. And talking about that, we love a good tax write-off, right? For a first-time desi home buyer, let's say who has been renting an apartment for years now, what are the hidden financial and tax benefits of switching from a rent check to a mortgage payment that they might not be aware of?
0: So based on your income, of course, there are a lot of variable factors, but taxes ka benefit hota hai, interest is tax deductible. Property tax is tax deductible. If short to the certain amount, mortgage insurance is tax deductible. Plus, eventually, slowly but surely, you are appreciating. आपके घर की value बढ़ती है, तो आपके घर में आपकी equity बढ़ती है. And so you know you can put your house to work for you. A lot of people, आज की तारीख में, I would say 30% of my application, 25 to 30% of my application यहाँ में जो inquiry आती है. वो कैश आउट की इंक्वायरी आती है. तो थिंक अबाउट इट, आपने घर खरीदा है 4-5 साल पहले, आपने 20% डाउन डाला था, अभी उसमें से आप 10-20% वापस आप कैश आउट कर सकते हो, और वो घर वहां का वहां है अगर आपके घर की वैल्यू बढ़ी है. विद दैट कैश आउट यू कैन इन्वेस्ट इन अनदर बिजनेस, यू कैन पे ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, यू कैन पे ऑफ योर कार, बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हो, बच्चे की शादी के लिए प्लान कर सकते हो, गॉड फॉरबिड कोई मेडिकल इमरजेंसी है. So, you know, owning a house is that pride of ownership, but there are also financial benefits in the long term. So I definitely think whether it's a primary residence or investment property, there are a lot of benefits of owning a home.
1: And if you are not able to garner enough strength to, you know, cross over, aap ek baar Dream Home Mortgage ki team ke saath, Hussain Panjwani sahab ke saath, aap baat karke dekho and see how they can help you in crossing over and deciding what to do, when to do, what is the process exactly to do that. To dreamhomemortgage.com pe sari jankari hai. Number abhi abhi share karna chahti hu aap logo se so that you can save it on your phones. 972-245-5626. Email came to find out the questions that are hovering on your mind, info@dreamhomemortgage.com, and they are very quick in responding as well. Just remember, close to 30 years of experience, mazak nahi hai Hussain sahab, seriously. Always want to send best wishes to you because you have sent so many bestest of the results to so many of your clients, so it you totally deserve to be congratulated for this.
0: Thank you, ma'am. I really appreciate it. And again, to all your listeners, any questions, if you are self-employed borrowers, there are so many programs we have. In lieu of your tax returns, we can qualify you with bank statements, so we disregard your tax returns. But there are a lot of different programs where we can help you. Yeah. The number is 972-245-5626, or the fastest way to get a response is info@dreamhomemortgage.com.
1: एब्सोल्युटली सर, एक क्वेश्चन है आपसे कि नॉर्थ टेक्सस स्पेशली आप समझें कि कॉलिन काउंटी एंड द वाइडर मेट्रोप्लेक्स एज वेल इज ग्रोइंग एट एन इनसेन पेस, तो अगर कोई घर खरीदने का सोच रहा है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, विच पॉकेट्स और सबर्ब्स इन DFW डू यू थिंक होल्ड द मोस्ट हिडन पोटेंशियल राइट नाउ?
0: सी, बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी राइट नाउ इज डेफिनेटली कॉलिन काउंटी, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि अगेन देर आर जो अभी थोड़ा बहुत H1Bs और इंडियंस पे थोड़ा एक फोकस चल रहा है, स्पेशली कॉलिन काउंटी में. सो देर आर, इट इज डेफिनेटली 100% बायर्स मार्केट. कॉलिन काउंटी इज स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स. अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है, value for the money wise, I would put my money on Collin County. But for instant, agar aapko rent karna hai, aapko value chahiye, so you would move to go to northeast Collin County, like Salina maybe, lekin Salina is on a higher price.
1: Achha.
0: But if you go to Princeton, there is some still value for the money. Melissa is still value for the money. Anna is value for the money. So hum wo dekh rahe ke kafi investors wahan invest kar rahe. Collin County, definitely, if I would invest, I would think about long time, because there are deals out there.
1: Okay.
0: And it is 100% a bias market.
1: Awesome. 2 मिनट है हुसैन साहब हमारे पास. cannot not
0: अगर
1: ask.
0: मुझे 2 मिनट है,
1: हाँ.
0: I would definitely talk about क्या आपको क्या पूछना था. Let's you start and then I'll
1: end. डाउन पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में, बिकॉज वी हैव स्टेप्ड इनटू द थर्ड क्वार्टर. एक क्विक ब्रीफ अगर इसके बारे में मिल जाए तो.
0: अभी वी स्टिल हैव सम फंड्स लेफ्ट. पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग दैट फंड. लाइक आई हैव ऑलवेज सेड के 1 जुलाई से शुरू होता है, एवरी क्वार्टर की बिगनिंग में होता है.
1: जी.
0: But because of 4th of July, there is still funds left. I think so.
1: Oh.
0: I think we still might have money left for next 1 or 2 weeks. So if you are, अगर आप first time home buyer हो, आपको लगता है कि आप a family of 4, total household income is less than 75,000 to 78,000. If you are a single family member, it's around somewhere close to 60,000. So if you fit into that bracket, first time home buyer. अगर आपकी इनकम 70,000-75,000 से कम है, कॉल अस. द वर्स्ट आंसर इज नो. देर इज अप टू $25,000 ग्रांट. द गुड न्यूज इज द मनी इज अवेलेबल एज ऑफ राइट नाउ. एज ऑफ फ्राइडे इट वॉज अवेलेबल. सो आई एम डेफिनेटली श्योर इट इज स्टिल अवेलेबल. तो इफ यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर, स्टिल वॉन्ट टू एटलीस्ट एक्सप्लोर योर ऑप्शन. इज दैट मनी अवेलेबल? यू कैन गेट अप टू $25,000 इन ग्रांट. So call us at 972-245-5626. Last, I know I might have less than 30 seconds left.
1: Yes.
0: If you are looking for any kind of commercial loan, whether you're trying to buy a land, develop that land, construct on that land, you can call us at Dream Home. The number is 972-245-5626 or info@dreamhomemortgage.com.
1: And listeners, my man here is actually precise on time. We have just 7 seconds to go. Thank you so much for your time and all the info.
0: Always a pleasure.
2: मामू देखो क्या हो गया.
3: ओ क्या हो गया?
2: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
3: ओए जर्मन का कमाल है.
2: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
3: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
4: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: So, ruko jara. Sabar karo.
15: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. स्टे ट्यून टू फनेशिया.
16: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक.

silver jubilee for this movie that released on this day in the year 2001, ladies and gentlemen. Or zero star power thi is film mein when it opened, but completely stole the country's heart. Aur ek sleeper hit ke tarah taur pe ye film aayi samne. Tum Bin, that's the name of the film. Word of mouth was the power of this film. Aur Anubhav Sinha, jo ki jaane maane director hain and bahut kamal ki films unhone hame di hain, wo the director is फिल्म के. और पहली बार जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, इट वॉज दिस फिल्म स्टारिंग प्रियांशु चैटर्जी, संदली सिन्हा एंड हिमांशु. और ये कोई बड़े नाम नहीं थे इंडस्ट्री में, लेकिन एक बड़ा नाम जो था वो था टी सीरीज का. टी सीरीज का म्यूजिक इस फिल्म के लिए, इट वॉज अ सुपर हिट, इंक्लूडिंग द सॉन्ग दैट आई प्लेड फॉर ऑल ऑफ यू. दैट वॉज द रिलीज ऑफ दिस डे 25 ईयर्स बैक, लेडीज एंड जेंटलमैन. थोड़े आगे चलते हैं 2001 से और 2018 पे लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज ही के दिन एक बहुत बढ़िया सी फिल्म रिलीज हुई थी स्टारिंग दिलजीत दोसांझ. एंड दिलजीत दोसांझ स्टेप इनटू द शूज ऑफ लेजेंडरी इंडियन हॉकी कैप्टन संदीप सिंह. और इट जस्ट वॉजेंट अनदर स्पोर्ट्स मूवी, सो टू से. एक डीपली इमोशनल स्पाइन चिलिंग स्टोरी ऑफ अ मैन हु वॉज एक्सीडेंटली शॉट, और उनकी वो पैरालाइज हो गए थे एंड ही वॉज व्हील चेयर बाउंड. और वहाँ से उठकर ही मेड द ग्रेटेस्ट कम बैक इन हॉकी हिस्ट्री. एंड दैट वॉज दिलजीत दोसांझ पोर्ट्रेइंग दैट कैरेक्टर. एक रॉ सिंसेरिटी एज संदीप सिंह दैट वी सॉ इन हिम. और तापसी पन्नू उनके साथ स्टेलर सपोर्ट. एंड ऑफकोर्स गुलजार के बोल इस गाने के लिए जो मैं आपके लिए प्ले करना चाहती हूँ, जो दिलजीत दोसांझ को मौका मिला गाने का. अच्छा, फिल्म का नाम बताया क्या मैंने? इट इज सूरमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2018. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

इट्स एब्सोल्युटली डिलाइटफुल टू सी दिलजीत दोसांझ इन एक्शन. वो चाहे म्यूजिक हो, चाहे उनकी बातचीत हो इंटरव्यूज में, वो चाहे उनकी एक्टिंग हो फिल्म्स में. और यू नो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी हार्ट वार्मिंग फिल्म एक्चुअली. अगर आपने ये फिल्म देखी नहीं है तो जरूर देखिए. आई वुड हाईली रिकमेंड. एज फॉर यू नो द वर्डिक्ट एट द बॉक्स ऑफिस, ठीक ठाक चली थी ये फिल्म, कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी. बट फॉर मी इट डेफिनेटली स्ट्रक अ कॉर्ड, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग कि अगर आपके पास वो मूड है कि एक स्पोर्ट्स बायोपिक आप देखें, तो फिर सूरमा कैन बी वन ऑफ योर चॉइसिस देयर. बागी रही दिलजीत दोसांझ और उनके बायोपिक्स, अमर सिंह चमकीला को कौन नहीं जानता. और अमर सिंह चमकीला को एक्चुअली ये कौन नहीं जानता वाले ब्रैकेट में लाने के का पूरा श्रेय जाता है इम्तियाज़ अली को और साथ में दिलजीत दोसांझ को. व्हाट एन अमेजिंग कॉम्बो दे आर, एंड दैट वी हैव सीन इन देयर रीसेंट रिलीज ऑल्सो. मैं वापस आऊँगा. अमेजिंग अमेजिंग creative artists that they are. It is indeed my pleasure to play this Amar Singh Chamkila song for you. Aur agar waqt raha to zarur lana chahungi main wapas aaunga kabhi gana. Ye jo film hai Diljit Dosanjh ki, Amar Singh Chamkila, available to you on Netflix. Aur Netflix pe aane wali hai main wapas aaunga on August 7th. By the way, if you haven't gotten a chance to catch it at the theaters.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
6: प्लान या होप?
5: मतलब?
6: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
5: ओके, तो मेरा वाला होप है।
6: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
5: क्यों?
6: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
4: वेल्थ टैक्टिक, Retirement planning with clarity and strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Beta, 95% aaye?
14: Haan, mummy.
13: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
15: Mera?
13: Haan. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
17: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
9: And while we are at it, कुछ और जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाए. This part of my show is brought to you by AG Fintechs, and this show is called Gupshup Gali with me too. और Gupshup Gali में मैं बताना चाहती हूँ आपको about AG Fintechs. AG Fintechs जो आपके tax और financial services provide करते हैं और काफी अलग अलग departments में बहुत बेहतरीन service देते हैं. Tax planning हो, tax filing and compliance की बात हो, virtual CFO services की बात हो, डायनामिक बुक कीपिंग की बात हो, R&D टैक्स क्रेडिट्स की बात हो या वेल्थ मैनेजमेंट की बात हो, यू कैन प्रोटेक्ट एंड मेंटेन योर वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट्स थ्रू देयर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज एंड द अदर प्रोग्राम्स दैट दे हैव फॉर यू. एंड इट इज मिस्टर Anil Grandi and his team who can help you with exactly that. 469-942-9888. That's their number. Or website hai agfintechs.com. All right, Azika. Azika, and mujhe aisa laga ki aapke saath car mein शायद आपके बॉयफ्रेंड हो, बिकॉज बहुत जो एक आवाज़ में ना, यू हैड दैट वाइब दैट टोल्ड मी दैट मे बी यू आर ट्रैवलिंग विथ योर बॉयफ्रेंड और मे बी योर गर्लफ्रेंड्स. व्हाई नॉट, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर अ गुड सॉन्ग एंड इट इज़ फनी शर रेडियो. वी आर हैप्पी टू प्ले योर चॉइस ऑफ म्यूजिक राइट हियर. हियर यू गो अज़ीका, एंड सेफ ट्रैवल्स टू यू.

बैक टू बैक म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 एफएम. और उसके बाद कुछ कॉस्मिक हेड्स अप टू यू कमिंग अप फ्रॉम पंडित ईश्वर जी.

पूछ ही तो रही हूँ आप लोगों से कि जो गाने आप सुनना चाहते हो ना, आई नीड टू गेट द वाइब फ्रॉम ऑल ऑफ यू. क्योंकि क्या है ना कि हमारे स्टूडियो में ना कोई खिड़की नहीं है, तो आप मेरे लिए वो विंडो हो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, टू द आउटसाइड वेदर, टू द आउटसाइड मूड राइट नाउ, बिकॉज आई एम रेडी टू एब्जॉर्ब इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. वंस अगेन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू. 9722355555 स्टूडियो का नंबर. यू मस्ट रिमेंबर दैट एंड सेव इट ऑन योर फोन्स. मेरे तो हाल कभी कभी ये हैं कि मुझे ये स्टूडियो का नंबर ज़्यादा अच्छे से याद है दैन माई ओन नंबर. कभी कभी मुँह से एक्चुअली कोई नंबर पूछता ना, तो ये वाला नंबर ज़्यादा जल्दी से निकलता है. दैट इज़ हाउ इट इज़ सो यू नो सॉर्ट ऑफ वी आर पार्ट ऑफ फनेशिया एंड इतना इनग्रेन्ड है हमें कि निकल ही आता है मुँह से. बट येस, थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन टू फनेशिया रेडियो, कीपिंग द पंजाबी वाइब राइट हियर. लेट्स गेट इन टू दिस नेक्स्ट ट्रैक. ये सारे कुछ गाने ऐसे हैं ना कि मुझे याद है कि पहली बार फनीशा रेडियो पे ही सुना था. हाउ कूल इज दैट. हाँ,

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

अमेजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन बाय विशाल शेखर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड विशाल शेखर का कॉन्सर्ट जो गए थे कल, वो सब जानते हैं कि कितना, मतलब इट वॉज धमाल कॉन्सर्ट. एवरीबॉडी वॉज स्टैंडिंग एंड चीयरिंग टू द पटाखा म्यूजिक एकदम. और क्या एनर्जी है यार दोनों में, मजा आ गया. आपने अगर मिस किया तो सच्ची में आपने मिस कर दिया. बट यू नो वॉट, दैट sort of brought me to this question that I'm thinking I'll ask you in the next segment. उसके बारे में बातचीत होगी तब. लेकिन फिलहाल जो इस amazing instrumentation को हम सुन रहे थे, उसी को याद करते हुए मुझे लगा कि it is so important for all the elements to come together in order for it to be this gem, right? वैसे ही jewelry का भी होता है ना, कोई design करता है, कोई उसे तराशता है, मतलब वो सारे ने एक combined effort होता है to make the best of the best jewelry for the people who, you know, take it as heirloom jewelry, you know. और ये generations after generation जो पास होता है, ये हमारे community का एक रिवाज रहा है, ये इसी का हिस्सा है. एंड श्री कृष्णा ज्वेलर्स, दे हैव दोज क्लासिक गोल्ड डिज़ाइंस, वो डायमंड्स में आप कह लें, वो स्पार्कलिंग डायमंड्स के ब्यूटिफुल डिज़ाइंस, या फिर वो इंट्रिकेट कुंदन और स्टनिंग पोल की कलेक्शन जो इनके पास है, ये इनकी एक्सपीरियंस बताती है दैट दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर एजेस नाउ, सिंस 1967 टू बी वेरी प्रिसाइज. न्यू लोकेशन इनकी जो है, ज़रूर चेकआउट करें एट 13145 सुइट 220 on Main Street in Frisco, ladies and gentlemen. It's a reflection of tradition, elegance and timeless beauty that you must remember. It is Gapshap Gali with me too. Mausam ke kuch tevar badle hain, usi ke baare mein batayenge in the next segment.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
4: लिया।
3: कभी policy समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338. Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
7: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands की life बदली उनकी divine guidance से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स

0: मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

एंड दैट्स द सॉन्ग दैट ब्रॉट टीयर्स टू विशाल दादलानी आईज. और ये कल के कॉन्सर्ट की बात कर रही हूँ. और कॉन्सर्ट एक ऐसी जगह जहाँ पे ना जैम पैक्ड वो जो एक माहौल होता है ना, दैट इज सो फैंटास्टिक एंड दैट इज वॉट गिव्स एनर्जी टू द आर्टिस्ट ऑल्सो ना, है ना. और ये गाना जब उन्होंने गाया तब उन्होंने मैंशन किया अबाउट आर वेरी ओन फरहाद वारिया. और फरहाद वारिया वो जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं फन एशिया नेटवर्क की, उनके एसोसिएशन के बारे में बात की विशाल दादलानी ने और शेखर रबजियानी ने, कि कैसे उन्होंने उन्हें ब्रेक मिला फ्रॉम फरहाद वारिया एंड इट्स द लॉन्ग एसोसिएशन दैट दे वेरी वार्मली स्पोक अबाउट बोथ द आर्टिस्ट विशाल एंड शेखर. एंड वी कांट टेल यू हाउ प्राउड वी फेल्ट राइट हियर एट फन एशिया रेडियो 104.9 FM. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मेरा आज का सवाल है कि भाई कॉन्सर्ट जब जाते हो और वो जो एक जैम पैक्ड माहौल मिलता है ना, उस माहौल के कारण पूरी एनर्जी ऑडियंस में भी बिखरती है. Wouldn't you agree कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर ना जितनी भीड़ हो उतना अच्छा होता है और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पे आपको वो क्वाइट स्पेस चाहिए होता है. When you're looking कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो ऐसी जगह पे आप कभी कभी जाना पसंद करते हो. सो वॉट इज दैट, ये एक ह्यूमन डिजाइन ग्लिच नहीं लगता कि किसी जगह पे ऐसा हो कि भाई खचाखच भीड़ और किसी जगह पे आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल यू नो दो चार लोग हों तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. सो यस, वॉन्टेड टू आस्क यू ऑल अबाउट दिस क्राउड पैराडॉक्स वी हैव, यू नो सॉर्ट ऑफ वेन टू वेन या वॉट आर द प्लेसेस दैट वी लुक फॉर, यू नो जब क्राउड की बात आती है जो आप चाहते हो कि क्राउडेड हो, ऐसी कौन सी जगह होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कॉन्सर्ट आप गए और आपने अगर देखा कि 10 लोग खड़े हैं थोड़ी ना मज़ा आता है, वो तो मतलब खचाखच भीड़ हो खड़े होने की जगह नहीं हो तो मज़ा आता है, राइट. जो कल का माहौल था बाय द वे, इफ़ यू मिस्ड इट यू मिस्ड इट. बट यस आई डू वॉन्ट टू आस्क यू ऑल दैट कि वो कौन सी जगह है आपके लिए जहाँ पर भीड़ ना होना तो मज़ा नहीं आता, और वो कौन सी जगह है कि जहाँ पर भीड़ नहीं हो तो ही मज़ा आता है. Let me know about that. Yes, that is the question that came to my mind when I went yesterday for the concert. And I thought, yeah, this question is reserved for you guys. There is a giveaway for the person who calls me first. I am going to give them. And actually, let's do it the other way. Jinka answer sabse mazedar, badhiya sa, interesting sa laga kuch, we'll give them the giveaway. This is Gupshup Gali with me too, 972-235-5555 number in the studio.

0: हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक आई माइट हैव फाउंड अ विनर फॉर द क्वेश्चन दैट आई हैड फॉर ऑल ऑफ यू. कि कुछ जगह होती है ना कि जहाँ पे हमें भीड़ की ज़रूरत होती है, भीड़ ना होना तो मज़ा नहीं आता. फॉर इंस्टेंस, लेट्स से सिनेमा हॉल, है ना, कि अगर आप कोई मूवी देखने गए हो और देख रहे हो कि भाई आप ही बैठे हुए हो, तो लगता है कि यार ये तो पिटी हुई फिल्म है, क्यों ही मैं आया, या आई, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. या फिर वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सर्ट्स, करेक्ट? तो बस यही मैं आप लोगों से जानना चाह रही थी कि भाई वो कौन सी जगह है आपके लिए कि आपको लगता है मतलब भीड़ हो तो मजा है, और वो कौन सी जगह है कि जहां पर आपको लगता है कि यहां भीड़ ना हो ना तो मजा आएगा. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए आपका नाम एक बार
1: जी
0: हमारे लिसनर्स को बताइए पहले.
1: जी मेरा नाम दीपक है, और वही ये मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने.
0: जी
1: जे बीइंग इंडियन, अगर हमारा हम अगर कोई फ्यूनरल में जा रहे हैं, फ्यूनरल में, तो
0: जी
1: अंतिम संस्कार वहां पे भीड़ होनी चाहिए.
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: भीड़ होनी
1: नहीं है तो
0: चाहिए, सही बात
1: हम
0: है.
1: मतलब उल्टा बोलेंगे, अरे ये बंदा कौन है, कौन मर गया, पता
0: कौन मर
1: नहीं
0: गया कि
1: है
0: मतलब
1: ना.
0: कोई आए ही नहीं पूछने के लिए, यू नो. हाँ भाई, फ्यूनरल में मेरे भी
1: जी
0: मतलब भीड़ तो होनी चाहिए. या यस
1: जैसे आपने बताया कॉन्सर्ट में भी भीड़ होनी चाहिए.
0: जी
1: अगर कोई प्रोग्राम है गजल का, वहां पे थोड़ा सा शांति वाला माहौल चाहिए हमें, तो वहां पे कम
0: हाँ,
1: भीड़ हो तो बेटर है. सेम
0: बेटर है बिल्कुल. हाँ
1: जी, और सेम वही मतलब अगर हम दर्शन के लिए जा रहे हैं कहीं मंदिर में या में,
0: हाँ
1: तो वहां
0: हाँ
1: पे भीड़ अच्छा नहीं लगता हमें.
0: सही बात
1: हमें चाहिए कि
0: है.
1: वहां पे कम भीड़ हो.
0: नहीं मतलब क्या पैराडॉक्स है, आपको ये नहीं लगता साथ में? देर इज वन अनादर प्लेस जहाँ पे मुझे लगता है ना कि भीड़ कम होनी चाहिए, और वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एयरप्लेन्स. मुझे मतलब जब इंटरनेशनल
1: राइट
0: फ्लाइट्स होती है ना, अगर आजू बाजू की कोई सीट खाली मिल जाए ना, तो ओ हो, मतलब मजा ही आ जाता है फिर तो. दीपक,
1: जी.
0: हाँ जी,
1: और एक और एक और मतलब हम
0: हाँ
1: रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, हमें जाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन वो ऑब्वियसली वो तो इन डिमांड रहेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन हमें चाहिए नहीं, अरे भाई तू क्यों आ गया.
0: या तो ऐसा चाहिए कि मतलब लाइन ना हो, कि हमें भी एंट्री मिल जाए, भीड़ भले ही हो लेकिन हमें भी एंट्री मिल जाए जल्दी से, वेट ना करना पड़े, है ना.
1: एग्जैक्टली, वेटिंग लिस्ट ना हो.
0: थैंक यू. आई थिंक वी हैव क्रैक्ट इट फॉर एवरीबॉडी हियर, है ना दीपक? वी हैव डन अ गुड जॉब हियर. दीपक, आपको नियॉन कैक्टस की तरफ से मिलता है $20 का गिफ्ट कार्ड. इट इज अ डाइनिंग गिफ्ट कार्ड विच विल गो टूवर्ड्स योर फाइनल बिल. एक ही बार में आपको यूज करना है, ये याद रखिएगा, और एक ही बार में यूज हो जाएगा, क्योंकि खाना वाकई में बहुत अच्छा आता है और भीड़ भी होती है, लेकिन आपके लिए जगह जरूर बन जाएगी, एंड वो भी बिल्कुल टाइमली. तो जरूर याद रखिए, मेक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी टू नो. भाई आप जल सकते हैं दीपक से, क्योंकि दीपक को तो भाई $20 गिफ्ट कार्ड डाइन इन मिल चुका है. थैंक यू फॉर योर कॉल, एंड जस्ट होल्ड द लाइन, आपकी सारी डिटेल्स ऑफ एयर लेती हूँ, ठीक है?
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू. एंड यस, देर आर सो मेनी प्लेसेस कि जहाँ पर हमें भीड़ नहीं चाहिए होती है. कुछ और अगर याद आता हो तो शेयर जरूर कीजिएगा. हाँ, गिव अवे नहीं है लेकिन तालियां है ना.

एंड इफ यू लाइक दिस सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन, बेला चाओ, जो गाना बहुत पॉपुलर किया था मनी हाइस्ट ने, उसी का एक ये इंडियन वर्जन, ये रीमेक जो बना है, ये जाता है क्रेडिट तनिष्क बागची को, जो जाने जाते हैं रीमेक्स के किंग, एंड ही हैज गॉटन दिस सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम द मूवी धमाल 4, विच इज टू रिलीज वेरी वेरी सून. इंद्र कुमार की ये फिल्म है एंड इट इज टू रिलीज, ओके इट हैज रिलीज. आई एम सॉरी, थोड़ा सा डेट का वो हो गया, क्योंकि भाई हम तो विशाल शेखर के कॉन्सर्ट के लिए डूबे हुए थे ना, इसीलिए ध्यान नहीं रहा. लेकिन यस अगर आपने देखी है तो भाई फीडबैक भी दे दीजिएगा. धमाल 4 विच इज़ अ मल्टी स्टारर फिल्म, अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा एंड अदर्स इन दिस वन फिल्म विच इज़ धमाल 4. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे ना कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको भीड़ अच्छी लगती है और ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. वैसे बहुत सारे और जगह हैं, कुछ और जगहों के जो मुझे जो पता चला वही मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूं इसके बारे में, कि एक और जगह है कि जहाँ पे भीड़ ना होना तो मज़ा नहीं आता. भीड़ मतलब ऐसे भी नहीं कि खचाखच भीड़, लेकिन ऐसा भीड़ कि लगे कि भाई भरा है. एंड दैट्स शॉपिंग मॉल, लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर शॉपिंग मॉल में ना अगर आप देखोगे कि इक्के दुक्के लोग हैं ना, तो भाई घोस्ट टाउन जैसी फील आती है, मज़ा नहीं आता है सीरियसली. एट द सेम टाइम देर इज़ दिस वन प्लेस दैट निशा एक्चुअली सजेस्टेड कि भाई ये एक जगह कि जहाँ पे आपको भीड़ नहीं चाहिए होती है, एंड दैट इज पब्लिक रेस्ट रूम या फिर ट्रायल रूम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड आई कंप्लीटली अग्री टू यू निशा. एंड यस, लेट्स डाइव इन टू दिस नेक्स्ट रीमेक ऑफ अनदर गाना दैट तनिष्क बागची हैज मेड.

लिसन, फ्लैश फ्लड वार्निंग था आज सुबह टैरन काउंटी के लिए, जो अब तो एक्सपायर कर गया है, लेकिन बदले में यू नो पार्ट्स ऑफ नॉर्थ टेक्सस इंक्लूडिंग टैरन, डेंटन एंड कॉलिन काउंटीज को काफ़ी बारिश मिली है. कुछ 3 inches ऑफ रेन सो फार दैट दे हैव अक्यूमुलेटेड. तो आगे अभी आफ्टरनून में भी कुछ शावर्स, कुछ यू नो स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म जो पॉसिबल है आफ्टरनून आवर्स में, और ये अगर उन पॉकेट्स में कंटिन्यू किया तो फिर फ्लडिंग चांसेस भी हैं. एंड दैट इज़ वॉट वन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ. बी केयरफुल वेन यू आर ड्राइविंग. और वो जो लो पॉकेट्स हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है ना, वो उनके लिए बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल रहें आप. एंड वॉट एल्स कैन आई टेल यू? आई कैन टेल यू दैट स्टॉर्म्स और शावर्स जो हैं, ये सारा कुछ हमारे रात के लिए थोड़ा सा टेपर डाउन हो जाएगा, बट इट विल रीडेवलप टुमारो अगेन, एंड दैट विल ब्रिंग अस सम मोर रेन tomorrow, and that is for all of you to know. और आज का high है कुछ 88. Obviously बारिश हुई है तो temperature भी drop हुआ है उसके साथ साथ. तो high आज का 88, low will be around 74, and कल वापस से हमारा थोड़ा chances rain का बढ़ेगा, and that will keep our temperatures in that range only, 89 for a high tomorrow, low will be around 74. और वेंसडे चलते वी विल बी बैक इन द 90s, बट द लोअर 90s दैट वी विल हैव विद द चांसेस ऑफ शावर्स एंड थंडर स्टॉर्म्स कंटिन्यूइंग इनटू वेंसडे एज वेल. यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मी टू. अगला सेगमेंट है फीफा फीवर सेगमेंट.

0: आइला रे ए आइला रे ए आइला रे ए मेरी जवानी पे तू है दीवानी रे
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
8: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
9: तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख
10: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग फोकस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स स्ट्रक्चर्ड कोचिंग एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
13: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
15: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
14: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
10: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच इट एक्सीड्स पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स सर्टिफाइड टीचर्स कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज ट्राई लुमिटी यू सी द डिफरेंस किड्स एजेस 5 टू 13 कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
16: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस
17: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
16: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
17: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
16: ये क्या होता
17: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
18: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन
19: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
21: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
23: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है
23: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: क्यों?
23: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
18: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
23: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
0: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
1: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
2: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो।

दिल तो भाई लगा हुआ है, चिपका हुआ है विद फीफा, इज इन दैट ट्रू? दिस इज फीफा फीवर सेगमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, सो गेट रेडी टू क्लियर योर स्केड्यूल्स टुमारो, क्योंकि द फील्ड ऑफ 48 हैज फाइनली बीन विटल्ड डाउन टू द फाइनल फोर टाइटल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ, ये वो आखिरी हफ्ता जो कि सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे और उसके बाद सीधे ग्रैंड फिनाले जो मेटलाइफ स्टेडियम इन न्यू जर्सी, दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय ऑन संडे जुलाई 19. दो मैसिव हैवी वेट क्लास क्लैशेस होने वाले हैं इस हफ्ते. एंड पहली बात करते हैं हम जो हमारे बैकयार्ड में होने वाला है, विच इज़ हैपनिंग टुमारो जुलाई 14 एट 2 PM आर AT&T स्टेडियम, जो कि फीफा के लिए डैलस स्टेडियम के नाम से जाना जा रहा है दुनिया भर में. इट इज़ गोइंग टू टर्न इनटू एन एब्सोल्यूट प्रेशर कुकर फॉर फ्रांस वर्सेज स्पेन. फ्रांस ने मोरक्को को डिस्पैच करके अपनी फाइनल जो है सेमीफाइनल्स में एक बर्थ सिक्योर कर लिया, कंप्लीटली रिलाइंग ऑन देयर टैक्टिकल डिसिप्लिन और क्लिनिकल फिनिशिंग. लेकिन उनके सामने जो टीम है अब वो है स्पेन की टीम. स्पेन एडवांस बाय नैरोली डिफीटिंग बेल्जियम, शोकेसिंग ए लीथल पोजेशन बेस्ड स्टाइल. एक उनका जो स्टाइल है दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव बी अ ब्रिक वॉल फॉर फ्रांस टू ओवरकम. तो एक सिंपल गेम नहीं होने वाला है ये. इट इज ए widely anticipated clash of generational talents on the biggest international stage, and we are talking about the crazy attacking firepower of Mbappe going head to head against the dynamite playmaking of prodigy Yamal ki baat kar rahe hain, Lamine Yamal ki baat kar rahe hain yahan pe, jo hum khud Dallas mein dekhne wale hain. Dallas ki crowd jo hai, janta jo hai, we are very very excited about this, and this is the final match that Dallas Stadium is going to host, so it is going to be crazy. लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रैफिक भी होगा और फील्ड पे बिल्कुल आग भी लगी होगी, सीरियसली. सो गेट रेडी फॉर दैट. एंड वेंसडे को, यानी कि जुलाई 15 को जो मैच है, इट इज गोइंग टू बी एट मर्सिडीज बेंज स्टेडियम इन एटलांटा फॉर इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, दैट द सेमीफाइनल्स इज गोइंग टू एंड एट. ये एक हैवी वेट क्लैश होने वाला है, ए रिन्यूअल ऑफ डीपली हिस्टोरिक वर्ल्ड कप राइवलरी दैट वी आर गोइंग टू सी अनफोल्ड ऑन वेंसडे. हैरी केन्स इंग्लैंड के जो हैं, ही बुक देयर स्पॉट आफ्टर अ हार्ड फॉट एक्स्ट्रा टाइम विक्ट्री ओवर नॉर्वे, जहाँ बेलिंगम स्टार्ड एज द की प्लेयर फॉर देम. लेकिन दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना नॉट बैकिंग डाउन, दैट्स फॉर श्योर. उन्होंने स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा टाइम में 3-1 से डिस्पैच किया. अर्जेंटीनाज वेटरन रेजिलियंस इज सेट टू चैलेंज द इंग्लिश स्क्वाड ब्रिमिंग विद यूथफुल मोमेंटम. कैन मेसी स्क्वाड एक्चुअली हैंडल द इंग्लिश यूथ, या फिर आपको लगता है कि हैरी केन बाजी मार जाएंगे? ये तो वेंसडे को पता चलेगा हमको. सो दीज टू सेमीफाइनल्स टू हैपन बैक टू बैक ऑन ट्यूजडे, दैट इज टुमारो एंड डे आफ्टर, एंड द लूजिंग टीम्स ऑफ दीज टू सेमीफाइनल्स विल प्ले ऑन सैटरडे जुलाई 18th फॉर थर्ड प्लेस इन द टूर्नामेंट. दैट इज टू बी सीन कि क्या होता है सैटरडे को, एंड ऑफकोर्स द ग्रैंड फिनाले ऑल सेट फॉर संडे जुलाई 19th. दिस फाइनल वीक ऑफ फीफा 2026 इज गोइंग टू बी ऑन फायर.

It is about the passion of FIFA that brings me this segment for all of you. And yes, FIFA Fever segment में यहाँ पे VTuber ऐसी के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं, बहुत पॉपुलर हो गई हैं ये. शी इज़ दिस पर्सन हु हैज़ दिस अवतार. उनका रियल चेहरा शायद किसी ने भी नहीं देखा है, एंड देयरफॉर शी इज़ द VTuber हु हैज़ गॉन क्रेजी पॉपुलर ड्यूरिंग दिस FIFA गेम. एंड द रीज़न बींग कि उन्होंने जिस भी टीम को सपोर्ट किया है वो टीम टूर्नामेंट से बाहर निकल गई है, इंक्लूडिंग ब्राज़ील एंड कोलंबिया एंड अनफॉर्चुनेटली द US एज वेल. तो अभी ये ना इस पे मीम्स और जोक्स बन गए हैं कि भाई तुम जो हो ना उसको सपोर्ट करो, हमारे राइवल टीम को सपोर्ट करो, एंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं. एंड दैट्स एसी इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट आउट. अभी मुझे पता नहीं कि सेमीफाइनल्स के लिए वो किन को सपोर्ट कर रही हैं, शायद वो खुद भी अब डर गई हैं अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने में. देयरफॉर देयर इज़ नो मैसेज ऑन दैट येट. येस, सेमीफाइनल्स स्टार्टिंग टुमारो. इतना कुछ ड्रामा चल रहा है और कितनी सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है. एक्चुअली नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड में जो वीकेंड पे जो मैच हुआ वो हम जानते हैं कि द स्काई कैम केबल इंसिडेंट दैट हैपेंड, कि जहां पे यू नो वी हैड सीन दैट बेलिंगम स्कोर्ड इंग्लैंड्स इक्वलाइजर इन फर्स्ट हाफ स्टॉपेज टाइम, और टेलीविजन रीप्लेस और फैंस ने नोटिस किया कि भाई नॉर्वेजियन गोलकीपर ने किक जब किया था वो इनक्रेडिबली क्लोज था टू द सस्पेंडेड स्पाइडर cam cable, and he pointed that out, but the referee didn't agree to that, and the you know game was continued. और बाद में FIFA ने भी ये कहा कि भाई ये उन्हें नहीं लगा कि क्योंकि उनका जो बॉल है इट हैज़ दैट टेक्नोलॉजी के वो पीक करता है कि इफ इट टचेस एनीथिंग इवन अ हेयर इफ इट टचेस. उनको वहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं मिला जिससे प्रूव होता कि केबल टच हुआ था. सो ऑल दैट ड्रामा इज गोइंग ऑन, और इसमें FIFA ने फ्यूचर का नया ब्लू प्रिंट भी हमारे सामने अब रख दिया है. सो अकॉर्डिंग टू FIFA रिपोर्ट्स द अपकमिंग 2013 टूर्नामेंट, विच बाय द वे मार्क्स द ग्रैंड सेंटिनरी ऑफ द वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स, क्योंकि 1930 में शुरुआत हुई थी FIFA वर्ल्ड कप की, तो 2030 जो 100 ईयर्स मनाएगा. नाउ दैट विल सी द टूर्नामेंट एक्सपैंड इवन फर्दर फ्रॉम 48 टीम्स टू ए मैसिव 64 टीम ग्रिड, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेकिंग इट द लार्जेस्ट इन हिस्ट्री. और अगर होस्ट लोकेशंस की बात करें तो पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को एक अनहिंज्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है, बिकॉज दिस स्पेशल एडिशन will span across 3 continents and 6 host countries next time. Spain, Portugal and Morocco, ये मेन ग्लोबल टूर्नामेंट्स के मेन मैचेस वहाँ पे खेले जाएंगे. लेकिन हिस्ट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए यू नो जो पहले जो मैच हुई थी वो उरुग्वे में हुआ था, तो उरुग्वे विल बी द फोर्थ लोकेशन, एंड अलोंग विद दैट अर्जेंटीना एंड पैराग्वे आल्सो, एंड देयर विल बी जस्ट द 3 सेरेमोनियल मैचेस दैट विल बी प्लेड इन दीज 3 प्लेसेस, दैट इज उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे. एंड उरुग्वे में 1930 का वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था, तो इसीलिए दे वांट टू गो बैक आफ्टर द 100 इयर्स टू द सेम प्लेस वेयर दे स्टार्टेड. सो दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक एज वेल. बट यस, दिस इज ऑल अबाउट FIFA दिस वीक, एंड यस, क्वाइट एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन विथ योर कमेंट्स इफ यू हैव एनी फॉर Who are you supporting?

जाने से पहले ना मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप अपने डॉक्टर से खुश नहीं है ना तो इट इज टाइम फॉर द चेंज. वो ना मतलब आप चलाते नहीं चलो, क्योंकि कभी कभी हमें आदत हो जाती है एंड वी फाइंड द प्रोसेस ऑफ चेंज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, और इसीलिए वी स्टिक टू द पीपल और द सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू. तो बस उसी की तो जरूरत है कि थोड़ा सा एफर्ट आपकी तरफ से टू रियली ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, और फिर देखिए कि आपका डॉक्टर्स विजिट कितना आसान हो जाता है और कितना इन्फॉर्मेटिव भी. यू नो बिकॉज आई वॉन्ट माई डॉक्टर टू टेल मी एग्जैक्टली इफ आई हैव एनी हेल्थ इश्यूज, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या सोल्यूशंस हैं और हाउ टू हैंडल इट, ऑल ऑफ दैट राइट. तो यहाँ पे आपको वक्त दिया जाता है, तबीयत से अच्छे से आराम से बैठ के आपको कोई जल्दबाजी नहीं की जाती, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दैट यू मस्ट रिमेंबर. और इसके अलावा आपका एनुअल विजिट हो या फिर कुछ एंजाइटी केयर के बारे में, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लीवर कंसर्न्स, या तो फिर वाइटमिन B12 डेफिशेंसी टेस्टिंग, या अगर आपको इनके अलावा भी कुछ हेल्थ कंडीशंस के बारे में जानना है तो यू नो वे टू गो. इट इज लेडीज एंड जेंटलमैन PassionHealthPhysicians.com, and the number to call is 214-666-6259.

0: And that's pretty much all the time I have. This is Me Too signing off for the day.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Is शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
6: माय टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Documents ya parcel bhejni hai?
9: Haan.
8: Ghar relocate karni hai?
9: Haan.
8: Gaadi bhi transport karna hai?
9: Haan bhai, haan.
8: To phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
10: Documents shipping, boxes shipping. Complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
11: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. Or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me. It's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं।
15: बुककीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं।
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं।
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance,

A very good afternoon to all my desi people. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ RJ Simmy with your favorite show, The Afternoon Adda. आज अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 12:40 और मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो गाने जो पूरे हफ्ते यानी कि लास्ट वीक लोगों के प्लेलिस्ट, रील्स, जिम सेशंस और लॉन्ग ड्राइव्स पे छाए रहे. और आज का काउंटडाउन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें रोमांस भी है, डांस भी है, पंजाबी तड़का भी है और फुल ऑन बॉलीवुड वाइब्स भी हैं. तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि शुरू होने वाला है टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ लास्ट वीक. हर गाने के साथ होगी थोड़ी मस्ती, थोड़ा बॉलीवुड का गॉसिप और बहुत सारे धमाकेदार लिसनर क्वेश्चंस भी. तो काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से और इस हफ्ते नंबर 5 पे है माशुका. ये गाना रोमांस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, टेकन फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2.

वैसे तो कई सॉन्ग है जो ट्रेंडिंग लिस्ट में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो धुरंधर के सॉन्ग्स है ना, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो नंबर 4 पे है वो भी धुरंधर का ही एक सॉन्ग है, आरी आरी। आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ लास्ट वीक, एंड एज आई टोल्ड यू, नंबर 4 पे है आरी आरी। इस गाने में पंजाबी एनर्जी है और बीट सुनते ही पैर ऑटोमेटिकली मूव करने लगते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जो वेडिंग में जब डीजे वगैरह का गाना बज रहा होता है तो पंजाबी बीट अगर वो लगा दे तो सबसे पहले तो डांस फ्लोर भर जाता है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, या फिर वो अंकल जो बोलते हैं अरे मैं डांस नहीं करता, मैं कहाँ डांस, मुझसे नहीं होता। लेकिन ऐसे पंजाबी बीट्स अमेजिंग होते हैं। दैट्स दी इंटायर समरी। और इस गाने के बाद मैं प्ले करने वाली हूँ फरीदा जी के लिए एक सॉन्ग, रिक्वेस्टेड बाई वासिम जी, सूरज हुआ मध्यम। बैक टू अमेजिंग सॉन्ग्स गाइस, आई होप यू एंजॉय इट।

गाइज, अब हम एंटर कर चुके हैं टॉप थ्री सॉन्ग्स में और टॉप थ्री में पहुंच चुके हैं। है जवानी तो इश्क हो रहा है जी। हाँ, अब टाइटल ही इतना फिल्मी है कि सुनते ही कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। वैसे बॉलीवुड ने हमें अमेजिंग सॉन्ग्स दिए हैं, उनमें से एक ये भी है। एंड नंबर टू पे है धमाल फोर से साड़ी सॉन्ग, जो कि एक मराठी वायरल सॉन्ग गुलाबी साड़ी का रिक्रिएशन है। तो लेट्स हियर देम बोथ वन बाय वन।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
7: माय टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट्स, रिएक्शंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स? मे बी इट्स टाइम टू चेंज द पैटर्न। आरती वेदुला, अ सर्टिफाइड एंड accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और ये था नंबर 2 इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ लास्ट वीक, गुलाबी साड़ी, जो कि एक मराठी सॉन्ग का रिवर्ब वर्जन है। धमाल 4 की, धमाल 4 जो मूवी आ रही है उसका सॉन्ग है ये। और अब वक्त आ गया है कि मैं रिवील करूं कि टॉप पे कौन है रैंक 1 पे। सो द टॉप जिसने किया है इस लिस्ट को वो है रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी, और वो और इसके साथ जो आज का हमारा सेगमेंट है टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द वीक उसको खत्म करते हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद आ रहा है हमारा गिव अवे राउंड जहां आप जीत सकते हैं इंटरेस्टिंग प्राइजेस। तो स्टे ट्यून्ड।

अब वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ और अगर आपको सही जवाब आता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन बिलिंग ऑफ $50। और डाइनिंग ऑप्शन है, ये लोकेटेड है मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन। और आपसे बस एक मतलब रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ये गेम तभी खेलें अगर आपने लास्ट एक महीने में चंडीगढ़ बाइट्स का कोई भी गिव अवे नहीं जीता हो फनेशिया के किसी भी शो में। ओके, तैयार हैं आप? मैं सवाल पूछने जा रही हूँ, तो ये एक रिडल है बेसिकली कि आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो इट्स अ वर्ड विथ स्टार्ट्स विथ लेटर टी, एंड्स विथ लेटर टी एंड हैज गॉट टी इन इट। ठीक है, स्टार्ट होता है टी से, टी फॉर टाइगर, और खत्म भी होता है टी से एंड हैज गॉट टी इन इट। ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो जवाब क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कॉल कीजिए मुझे @972235555।

हमें हमारे गिव अवे राउंड का विनर मिल चुका है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो क्या है जो कि टी से स्टार्ट होता है, टी से खत्म होता है एंड हैज गॉट टी इन इट, यानी चाय इन इट। और बहुत सारे लोगों के कॉल आए और बहुत सारे सही जवाब भी मिले। इसका जवाब है टी पॉट। सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिया है वो है वसुधा। कॉन्ग्रेचुलेशंस वसुधा, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ जब आप जाएंगी वहां पे डाइनिंग ऑप्शन के लिए। और आपके जो बिल वगैरह हो जाएगा, आप अपने फैमिली के साथ जाएं तो $50 का बिल होते ही आपको $10 आपको रिडीम कर सकते हैं। ओके, ये लोकेटेड है मैकडरमॉट ड्राइव इन एलएन। और अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है चंडीगढ़ बाइट्स का खाना तो जरूर जाएं। और उनका लंच है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो लंच के टाइम पे अपनी डिशेज रोटेट करते रहते हैं डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको इस पे और डिटेल चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे जाएं, विच इज चंडीगढ़ bites.com।

दिल की तो आपने सुन ली, थोड़ी अपनी बॉडी की भी सुन लीजिए और थोड़ी डॉक्टर्स की भी सुन लीजिए। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्थ फैक्ट ऑफ द डे फ्रॉम पैशन प्राइमरी हेल्थ केयर। और मुझे पता चला है कि ये जो हमारी बॉडी है, हमारे किसी भी एडल्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं, दे कैन स्ट्रेच फॉर नियरली 60,000 miles। अगर किलोमीटर्स में बात करें तो 96,000 kilometers। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ताकि ये जो इनक्रेडिबल नेटवर्क है थ्रू आउट योर बॉडी, ये मेंटेन हो सके। तो मेरी तो यही गुजारिश है आप लोगों से कि भाई ये जो इश्क वाला लव जो हम बाकी लोगों से करते रहते हैं, सबसे पहले खुद से कर लेते हैं।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
4: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
11: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
12: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: आप सुन रहे हैं फर्नीचर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। अभी हमारे साथ कॉल पे हैं एक खास मेहमान मिस्टर अमन फ्रॉम उरा, जो कि आपको बताएंगे डेट रिलीफ प्रोग्राम्स के बारे में। हाय अमन।
1: हेलो फनीश, सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार। सो दोस्तों, महीना बिल्कुल मिड में पहुंचने लगा है और ये साल भी मिड में पहुंच गया है, तो लेकिन एक चीज जो गलती हम सब लोग कर रहे हैं वो ये कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भर रहे हैं। आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट्स वाई आपका क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं है। तो अगर आप परेशान हैं, ना क्रेडिट कार्ड उतर रहा है, ना पर्सनल लोन्स उतर रहे हैं, गाड़ी जो रीपोजेस हो गई या टोटल हो गई उसका लोन भी सर पर है, क्या करें? महीना शुरू होता है, खत्म होता है, ये हिंदी टीवी सीरियल की तरह एक डिस्कशन होती है घर में। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए, सही सुना, आधे से ज्यादा माफ हो जाए, तो उसके लिए सोल्यूशन है डेट सेटलमेंट उरा। उरा को कॉल कीजिए, आपके सारे क्रेडिट कार्ड, आपकी आपकी वाइफ के क्रेडिट कार्ड, उन सबकी एक ज्वाइंट पेमेंट बन जाएगी और उसमें से आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा दिया जाएगा। जो बाकी आधा बचेगा उसको हम लोग नेगोशिएशन करके इंटरेस्ट फ्री पेमेंट आसान किस्तें बना देंगे। ना सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड, आपके पर्सनल लोन्स या फिर गाड़ी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि रीपोजेस हो जाती है, जो गाड़ी उठा के ले जाती है बैंक बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, या फिर टोटल हो जाती है किसी कारण, तो उसको भी नेगोशिएट करके उस लोन को आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है। तो आंखें बंद करके मिनिमम पेमेंट देना बंद कीजिए, कॉल कीजिए उरा को। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-9914, 1-888-888-9914। और अगर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं, एनी टाइम कॉल मी डायरेक्टली 9167763555, 9167763555, वंस अगेन 9167763555। और हमारी वेबसाइट है www.ura.org। लेकिन नंबर ना भी लिख पाए हूं तो अच्छे से गाने की फरमाइश कीजिए, फनीशिया कॉल कीजिए, नंबर ले लीजिए और आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाइए, लेकिन मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल जरूर कीजिए।
0: थैंक यू सो मच अमन, विल कनेक्ट विथ यू अगेन।
1: थैंक यू।
0: एंड अच्छे अच्छे गानों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं ये नेक्स्ट सॉन्ग आप लोगों के लिए बजाने जा रही हूँ। सो एंजॉय गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।

इश्क बुलावा तो ठीक है, लेकिन जब भूख का बुलावा आए तो कहाँ जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लंच का भी टाइम देखिए हो रहा है। P3 ईटरी जा सकते हैं आप, जहाँ आपको मिलेगा सिजलिंग कबाब, फ्लेवर फूड चाट और बहुत सारे रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स भी। अगर आप अभी तक P3 ईटरी नहीं गए हैं, वहाँ का खाना नहीं खाया है, तो आप सीरियसली ना अच्छा टेस्ट मिस कर रहे हैं लाइफ में। आप यहाँ ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर डेट नाइट हो या फूडी मीटअप, हर एक इवेंट क्या हिस्सा बनाइए P3 ईटरी को। और ये लोकेटेड है एट हब 121 पे, और अगर आपको इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप इनको वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हैं, एंड देयर वेबसाइट इज P3ETRI.com। अब अगला सॉन्ग जो है वो सफी की रिक्वेस्ट पे बजाया जा रहा है, दिस इज जालिमा फ्रॉम द मूवी रईस।

अगर आप भी अपने स्पेशल मोमेंट्स को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा और स्पार्कल और शाइन लाना चाहते हैं, देन प्लीज गो टू मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड, जो कि लोकेटेड है फ्रिस्को में ऑन प्रेस्टन रोड। ये आपका परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, जो कि एलिगेंट है, टाइमलेस है एंड इट इज क्राफ्टेड टू शाइन। यहाँ आपको मिलेगा ब्यूटीफुल रिंग्स से लेके इयर रिंग्स से लेके डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल। यहाँ आपको अपना परफेक्ट पीस अगर आप ढूंढ रहे हैं फॉर एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन या फिर खुद को ट्रीट देना चाहते हो, तो भी मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जरूर जाएं। और अगर आपके उनको लेटेस्ट कलेक्शन चेक करना हो कि क्या अपडेट है, कोई ऑफर है या नहीं, ये सारे डिटेल्स आपको उनके ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप इनके ऐप जरूर डाउनलोड करें।

इफ यू आर लुकिंग समवन जो कि आपको हेल्प करे टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज बताएं आपको एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान देन योर रेगुलर प्लान, तो आप जो है माई टाइम इक्विटी को जरूर कंसल्ट करें. दिस इज लेड बाई CPA सुधीर पाई. और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं और रिटायरमेंट के लिए, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, प्लान्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी माई टाइम इक्विटी इज डेफिनेटली अ राइट चॉइस फॉर यू. आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 4697021272 पे, या फिर आप इनके वेबसाइट पे भी जाके इनको मैसेज कर सकते हैं या डिटेल्स ले सकते हैं, विच इज माई टाइम इक्विटी .com.

0: just wanted to tell you, since the very first day I saw you, I love you.
1: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग, और ऐसे ही अमेजिंग सॉन्ग का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद. ओके, सो स्टे ट्यून्ड.
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, केजीएमपी 104.9 एफएम HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 एफएम HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा
3: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
19: लिया।
18: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
19: नहीं आया।
18: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके साथ कितना टाइम बिताते हैं, याद कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्स, और फिर आपका डायग्नोसिस हो जाता है, फिर आप फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इतना टाइम काफ़ी होता है डॉक्टर के साथ बिता के उनको अपनी प्रॉब्लम, अपना पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 30 मिनट तो मिलने ही चाहिए डॉक्टर से, ताकि वो आप उनको जो है अपने हेल्थ के बारे में सब कुछ बता सके और वो बेहतर समझ सके। ये 30 मिनट्स आपको मिलेंगे पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में, जहां आपको पेशेंट की तरह नहीं फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आप अपनी अगर फैमिलीज में कोई कंसर्न है, किसी आपको कोई कंसर्न है, तो आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जरूर जाएं। और सिर्फ 30 मिनट्स ही लगता है आपको कंप्लीट एनुअल फिजिकल चेकअप कराना हो, एंग्जाइटी केयर हो, फाइब्रो स्कैन कराना हो, फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो गई हो, टेस्टिंग कराने हो, और भी बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो डू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं 214-666-6259 to book your appointment at Passion Health Primary Care.

If you are a business owner in Texas and you are looking for smarter commercial energy solution, तो आप तारा commercial energy को जरूर consult करें, क्योंकि ये देते हैं competitive rates, reliable services और customized energy plan. ये हैं Texas businesses में since 2002, for the long period of time इन्होंने सारे businesses की help की है, मदद की है उनको proper energy solution लाने में. आप इनको call कर सकते हैं at 844-428-2808 पे, या फिर विजिट कीजिए उनका वेबसाइट जो कि है ताराएनर्जी.com.

ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, मैं वापस आऊंगा और मैं भी वापस आऊंगी यार, कल आऊंगी जरूर, ट्यूसडे है कल, मैं आती हूँ मंडे टू थर्सडे 12:30 से 2:30 बजे तक। और अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि ये जो शो था आफ्टरनून अड्डा, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई एजे फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल, इंडिविजुअल्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं और आपको फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार कर देते हैं। तो डू रीच आउट टू देम एट 4699429888 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज AJFintechs.com।

0: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
1: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
0: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. और जी मंडे का दिन शुरू हो चुका है. वैसे आप जानते हैं 2:30 से 5 बजे तक मैं आपके साथ रहती हूं मंडे थ्रू फ्राइडे, और हर रोज एक नया फ्लेवर, एक नई कहानी आपके लिए लेकर आती हूं. मंडेज का दिन इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू, योर चॉइस, योर लव्ड एंड लाइक्ड सॉन्ग्स. और उसी के साथ मंडे का दिन आपकी पसंद, यानी के वो कहते हैं ना फिल्मी फरमाइश, पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. आप कर सकते हैं मुझे कॉल 972-235-5555 पे. और आज का दिन इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू योर मैसेजेस. आपने किसी को कोई मैसेज देना है, कुछ डेडिकेशन देनी है, कोई बात मुझे बतानी है ताकि मैं किसी को आपकी तरफ से कन्वे कर सकूं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यू कैन कॉल मी 972-235-5555. Keep those calls coming.

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो हम सब जानते हैं जी कि ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू डील विद द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो बहुत सारे वक्तों में हमें मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं इस सिचुएशन में. और साथ ही साथ अपनी सेहत का, अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल आप ही ने रखना है. तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए and let attorney Omar Khwaja do the rest for you. Their attorney Omar Khwaja and their team will guide you step by step, will help you fight your case for you, and will get you the best compensation that you deserve. Aur aapke liye jo behtareen baat hai wo ye ki you don't have to pay anything until you win the case. To win-win situation hai, rahat ka ye ek paigham hai is stressful situation mein. To agar aap ya somebody you know of or care for is going through something like that, to unhe abhi अटर्नी उमर ख्वाजा का नंबर दीजिए. गिव अटर्नी उमर ख्वाजा अ कॉल. द नंबर इज 469-300-5046. उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज अटर्नी उमर, OMAR, attorneyumar.com. जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो मंडे होता है वो कम्प्लीटली मैं अपने सुनने वालों को डेडिकेट करती हूँ. यू आर सो ऑसम. आप लोग इतने प्यार से फ़ोन कॉल्स करते हैं, प्यार से सुनते हैं, बातें करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. सो मंडे इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू. सो ये है जी फिल्मी फरमाइश, पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, आपके मनपसंद आरजे के साथ, यानी कि मैं किरण आपके साथ मौजूद हूँ. और ना सिर्फ ये आप ही के कहने पे, ना सिर्फ ये कि आपकी पसंद के गाने, बल्कि आपके मैसेजेस भी हम रिले करते हैं. मेरे थ्रू आप रिले कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई अचीवमेंट आपकी हुई है, आपके किसी प्यारे ने कोई अचीवमेंट की है, कोई मैसेज देना है, कोई नाराज हो गया है आपसे, उसको कोई गाना डेडिकेट करके मनाना है, एवरीथिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं. और देखिए ये जो पहला मैसेज आया है, ये आया है श्वेता की तरफ से. श्वेता के जो बेटे हैं सौबिक हैज वन हिज फर्स्ट सोलो चेस गेम एंड इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ कोर्स फॉर सौबिक एज वेल एज द प्राउड parents. So Sobik, congratulations to you from me, yani ke Surahari Kiran, and the entire team of Fanasia for winning your first solo chess game. And here is a song that is dedicated to you by your mom. Enjoy.

फिल्मी फरमाइश सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में, और फिल्मी फरमाइश के साथ आपके मैसेजेस, आपकी बातें हैं, कोई डेडिकेशन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपने किसी प्यारे तक पहुंचानी है वो मेरे थ्रू पहुंचा सकते हैं. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. उसके अलावा कोई बात आपने शेयर करनी है तो डेफिनेटली आई एम ऑल इयर्स. आज का दिन इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द वंडरफुल ऑडियंस दैट यू आर एंड यू ऑलवेज हैव बीन. आगे बढ़ रहे हैं जी. अगला गाना आपके लिए प्ले करते हुए आपको बताऊं, अगर आप H1, F1, L1 वीजा पे हैं, कोई और नॉन इमिग्रेंट वीजा है आपका, एंड यू आर लुकिंग और प्लानिंग फॉर योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज द राइट प्लेस फॉर यू टू गो. एंड अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है जी एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन, एज वेल एज US सिटीजनशिप. कोई भी आपका सवाल है इन हवालों से या किसी भी और यू नो इमिग्रेशन का सवाल है तो सीमा मेहता एंड हर लॉ फर्म इज हेयर, अटर्नी सीमा मेहता एंड हर लॉ फर्म इज हेयर टू हेल्प यू. व्हाई डोंट यू ड्रॉप एन ईमेल एट दिस ईमेल आईडी विद योर क्वेश्चन एंड दे विल गेट बैक टू यू एज सून एज दे कैन. एंड दैट नंबर, दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com. वंस अगेन दैट इज info@seemamehtalawfirm.com. This is the Law Offices of Seema Mehta.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को। हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
4: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
4: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
0: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
0: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
6: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली।
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
0: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181, मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: मामू, देखो क्या हो गया।
12: ओ, क्या हो गया?
11: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
12: कोई जर्मन का कमाल है।
11: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
12: ओ नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
0: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
13: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy. You need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
15: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
16: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
17: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

0: You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. में फिल्मी फरमाइश चल रहा है. मंडे का दिन ना सिर्फ फिल्मी फरमाइश बल्कि अगर आप कोई मैसेज किसी को रिले करना चाहते हैं, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू वांट टू कांग्रेचुलेट समवन और यू वांट टू पास ऑन सम सॉन्ग फॉर समवन, डेडिकेटेड सॉन्ग, आई एम ऑल इयर्स फॉर यू. अच्छा जी, ये जो गाना आप सुन रहे थे दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी सिटी लाइट्स. और इस गाने की खासियत ये थी कि 7th जो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स थे उसमें ये गाना बहुत सारी चीजों के लिए नॉमिनेट हुआ. सॉन्ग ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर अरिजीत सिंह ऑफ कोर्स फॉर मुस्कुराने, उसके अलावा म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेशन मिली इस गाने को, लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेशन मिली इसी गाने के लिए रश्मि सिंह को, अपकमिंग लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर के लिए भी रश्मि सिंह ने नॉमिनेशन पाई इस गाने के लिए, बल्कि जीती भी. साथ ही साथ राग इंस्पायर्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन जो है वो तो खैर इसी फिल्म के सोने दो को मिली थी, लेकिन लिसनर्स सॉन्ग चॉइस ऑफ द ईयर जीता मुस्कुराने की वजह तुम होने ऑन द 7th मिर्ची म्यूजिक अवार्ड. सो दिस सॉन्ग वॉज वेरी स्पेशल, टेकन फ्रॉम द मूवी सिटी लाइट्स. 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी, एन अक्लेम्ड यू नो हिंदी ड्रामा फिल्म जिसे हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था, राजकुमार राव और प्रतलेखा हमें इसमें नजर आए थे इन लीड रोल्स. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ फार्मर जो कि अपने गाँव से शहर मुंबई मूव होते हैं एंड देन ही हैज टू गो थ्रू you know the difficulties of living, the realities of living in the city. इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. अगला गाना आपके लिए आशा आपकी रिक्वेस्ट पे प्ले कर रही हूँ, टेकन फ्रॉम द मूवी धन धना धन गोल. वैसे आजकल गोल का सीजन भी चल रहा है.
1: नहीं तुझसे बिल्लो,
2: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
1: जो भी दे यही पूछ है ये किस की बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई.

This part of our show is brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms in the U.S. Innovative AG, and they offer innovative financial services and untapped potential for both individuals as well as businesses. So, aap individually help chahte hain, support chahte hain, ya guidance chahte hain, ya as a business owner chahte hain, AG FinTechs is the place for you to go. They are trusted, they are efficient, and they get you ready for your future. Give them a call today. Koi bhi aapke zehen mein sawal hai, give AG FinTechs a call and they will definitely guide you, help you and sort your things out. That number is 469-942-9888. 469-942-9888 is that number. Aur aap unki website bhi visit kar sakte hain. Bahut sari information aapko wahan pe milegi. That website is agfintax.com. Once again, that website is agfintax, FINTAX.com. जी, तो जैसे आप जानते हैं फिल्मी फरमाइश चल रहा है आपके लिए, पसंद आपकी, आपकी मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे यानी के सुनहरी किरण के साथ आप ये फरमाइशें कर सकते हैं. कोई गाना, कोई मैसेज किसी को रिले करना चाहते हैं, फॉर श्योर आई एम ऑल ईयर्स. सो ये मैसेज जो जा रहा है ये मलिक साहब की तरफ से जा रहा है उनके भाई के लिए जो कि बहरीन में रहते हैं और उनका नाम है जी कमर शहजाद. सो कमर साहब, दिस इज गोइंग आउट टू यू फ्रॉम योर brother right here in US.

All right, this is a question that is going out to all of you. How much time does your doctor spend with you? 5 minutes? 10 minutes? कई बार हमारा होता है कि जी डॉक्टर आया और हमने इतना देर उसका इंतजार किया और आए और आके 5 मिनट भी नहीं स्पेंड की और बस देख के चल दिए एंड देन दैट्स इट. लेकिन यू नो प्राइमरी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे ऐसा नहीं होता बिकॉज एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स क्योंकि दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू योर हेल्थ कंडीशन एंड दे वॉन्ट टू मेक यू फील लाइक यू आर एट होम योर फैमिली नॉट जस्ट अ पेशेंट. सो 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल. एंजाइटी केयर हो, फाइब्रोस्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हो, वाइटमिन B12 डेफिशेंसी टेस्टिंग आपने करानी हो या फिर और भी यू नो सो मेनी थिंग्स दैट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर्स कवर फॉर यू. तो अगर आप स्केड्यूल अपॉइंटमेंट अपनी कराना चाहते हैं एंड यू want that kind of passionate care for you, you know, you want someone to care for you just as passionately as you feel about your health, toh phir Passion Health Primary Care is the place for you to go. Why don't you give them a call to book an appointment or any other question that you have. That number is 214-666-6259. 214-666-6259 is that number. Give them a call, ask your question, book your appointment. This is Passion Health Primary Care for you, jahan aapki health matters the most. They are very passionate about it. So give them a call next time when you have a visit or you are thinking about your health. To ji, isi ke saath gaane chal rahe hain aapki pasand ke aur ye gaana Sunaina ki request pe main laga rahi hoon. An absolutely beautiful, beautiful song, Sunaina. Thank you so much.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
2: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
5: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
5: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश

0: ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब। Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
2: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन.
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन.
10: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
12: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to game.
14: कितने आदमी थे?
15: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

ये ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. दिस इज फिल्मी फरमाइश राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. ढाई बजे से पांच बजे तक मैं आपके साथ रहती हूँ. आपको बताती चलूं जी कि आज हमारा सिचुएशन है, साढ़े चार बजे हमारे साथ कनेक्ट करेंगे माथुर लॉ ऑफिसर्स के अटर्नी संजय माथुर. आपके क्वेश्चन लाइव लेंगे रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन या फिर इमिग्रेशन, फैमिली लॉ, क्रिमिनल, कोई भी इस तरह का आपका केस है या आप कोई यू नो ओपिनियन लेना चाहते हैं तो ही विल बी हेयर लाइव विद यू ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशियल रेडियो फ्रॉम 4:30 टिल 5 PM. यू कैन कॉल इन, आस्क योर क्वेश्चंस लाइव. और चार बजे से साढ़े चार बजे तक मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ट्रैफिक, करेंसी, वेदर अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट, सो मच इन्फॉर्मेशन दैट इज लाइंड अप फॉर यू. ये आपका जो है पसंद के गाने यूं ही साथ साथ चलते रहेंगे. आप कॉल करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपको क्या सुनना है और डेफिनेटली उसको आपके लिए प्ले किया जाएगा. फिलहाल वी आर एंटरिंग इन टू आर कॉन्वर्सेशन विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय फूडिस्तान इन ऑबरी. तो अगर आपको फ्रेश ग्रोसरीज चाहिए, हलाल प्रोड्यूस चाहिए, हलाल मीट चाहिए, साथ ही साथ ताज़ा आपको सब्जियां एंड ऑल दैट स्टफ जो हमारी किचन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आपको बेकरी आइटम्स फ्रेश चाहिए या अगर आप लाइव पानी पूरी खाने के शौकीन हैं और वाइल यू आर शॉपिंग आपका दिल करता है कि भाई पानी पूरी भी हो जाए या गन्ने का रस हो जाए, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा फूडिस्तान में जो कि ऑबरी में लोकेटेड है. और ना सिर्फ ये बल्कि यू विल ऑल्सो गेट एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस बिकॉज देर आर रेस्टोरेंट्स इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी दैट आर एब्सोल्युटली अपस्केल. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फूडिस्तान वाले ऑफर भी कर रहे हैं आपको लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज और साथ ही साथ फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles. तो ये हो गया आपके लिए ये, और अब मौका है आपके पास ये फ्री आइटम जीतने का फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट दैट इज लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान. दिस इज एन अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट जो फूडिस्तान के अंदर लोकेटेड है. फ्री आइटम आप इसका जीत सकते हैं जब आप मुझे कॉल करेंगे. कॉल करिए मुझे और ये बताइए कि यू नो आप अपने जो लव्ड वंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई ऐसी बात करना चाहते हैं तो कोई मैसेज, कोई बात, कोई चीज़ मेरे साथ आप शेयर कीजिए. दिस इज टोटली क्योंकि आपका शो है तो आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं आपके जहन में क्या चल रहा है. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, यू वांट द ऑडियंस टू लिसन टू या फिर यू वांट समवन वेरी स्पेशल इन योर लाइफ टू लिसन टू 9722355555. आपका दिन, इसीलिए कॉल भी आपकी और बात भी आपकी. वंस अगेन दैट नंबर इज 9722355555.

फूडिस्तान इन ऑबरी की तरफ से आपके लिए आया था एक गिव अवे, एंड दिस गिव अवे वॉज फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, द अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान. और आप कोई भी मैसेज, कोई भी बात शेयर कर सकते थे, और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों की फोन कॉल्स आई, ऑल द मैसेजेस दैट यू हैव यू नो आस्क्ड मी टू गिव टू योर लव्ड वंस. और कुछ तो आपके साथ ही बैठे थे और आपने उन्हीं को मेरे थ्रू मैसेज दिया, दैट वाज सो स्वीट. बट आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं जी फयाज. फयाज कंग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है ये गिव अवे. हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर फ्री आइटम. द मैसेज इज गोइंग आउट फ्रॉम फयाज टू हिज वाइफ सबा. वो गई हुई हैं कहीं, एंड ही जस्ट वॉन्टेड टू टेल हर दैट ही मिसेज हर, एंड यू नो ही वॉन्ट्स टू कम बैक जल्दी से, बिकॉज घर काफी उदास और सूना हो जाता है जब उनकी बेगम घर छोड़ के जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, बच्चों को लेके भी कहीं चली जाए तो. और देखिए, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो विच रिमाइंड्स मी ऑफ यू नो डिस्कसिंग इट विद यू, के एक्सप्रेसिंग लव टू आर लव्ड वंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या, इट बिल्ड्स इमोशनल सेफ्टी, इट फॉस्टर्स डीप इंटिमेसी, और साथ ही साथ प्रोवाइड करता है वो रीअश्योरेंस जो हर इंसान को चाहिए होता है. एक्सप्रेशन के बगैर इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स कैन एक्सपीरियंस डिस्टेंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या वो कहते हैं ना कि इजहार जो है वो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इजहार या किसी बात का इकरार करना या इजहार करना ऐसे है जैसे किसी पौधे को पानी देना. अगर आप उस पौधे को पानी नहीं देंगे और कहते रहेंगे कि भाई ये मेरा फेवरेट पौधा है, लेकिन पानी नहीं देना आपने इसको, तो वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा. सो पानी देते रहिए अपने रिलेशनशिप को. वो पानी क्या है? इजहार का पानी. एंड दिस इज, देखिए गाना कौन सा, मुझे उन्होंने बताया कि उनकी पसंद का ये गाना हमने लगाना है. दिस इज गोइंग आउट फ्रॉम हिज साइड, फयाज साइड टू हिज वाइफ सबा.

एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड अ ब्यूटिफुल डेडिकेशन. अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मेरी नज़रों से गुजरी तो आपको बताती चलूँ, और वो है गोविंदा के हवाले से. गोविंदा ने अनाउंस कर दिया है दैट ही इज़ कमिंग बैक टू सिल्वर स्क्रीन दो मूवीज़ के साथ. वन इज़ रूपा एंड वन इज़ दुनियादारी. ये दोनों मूवीज़ अब इनकी आ रही हैं. आज ही मेरा ख्याल है उनकी अनाउंसमेंट आई है ये कि ये दो प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, और न्यू जो रूपा फिल्म है उसमें वो एक न्यू कमर के साथ नज़र आएंगे. ना सिर्फ ये कि वो एक्टिंग करेंगे इस फिल्म में, बल्कि ही विल बी अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एज वेल. और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस फिल्म की, उसमें गोविंदा ने ये कहा कि यू नो ही टॉक्ड अबाउट हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ही ऑल्सो शेयर्ड हिज थॉट्स ऑन रूपा द फिल्म एंड वट द प्रोजेक्ट मीन्स टू हिम. और साथ साथ what he said was that now I am ready and you will see the entire cast of Rupa film soon and we will be announcing it in our next meet. So audience जो है वो अब गोविंदा को देखेगी एक नए चेहरे के साथ, जैसे कि बहुत सारे हमें अपने veteran stars या जो established stars हैं वो कई बार नए चेहरों के साथ नजर आते हैं. It will be interesting to see के what Govinda has lined up for you or for us, all of our viewers and all of the fans of Govinda. Aur Govinda ki baat hui hai to koi na koi Govinda ka gana to sunna hi hai. This one is such a beautiful number.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Heere moti maina chahu.
5: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
6: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं.
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं.
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं.
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
15: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
18: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
17: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
18: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app. For exclusive deals. The Flavor Lounge, Harbhai Super Hit.
19: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
20: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
21: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
22: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
23: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
24: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
25: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी,
0: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
24: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
21: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

जी हाँ, और अगर आप भी किसी को बुलाना चाहते हैं और किसी से कह रहे हैं आ जाइए, हमारा कोई इवेंट है जैसे कि वेडिंग हुआ, ग्रेजुएशन आपकी कोई आने वाली है, हाउस वार्मिंग पार्टी आपने थ्रो करनी है या कोई भी और स्पेशल ओकेजन, तो बिफोर दिस कि आप स्ट्रेस आउट करना स्टार्ट करें कि जी वेन्यू क्या होगा, डिकोर क्या होगा, साथ ही साथ खाना कहाँ से केटर होगा, छोटी छोटी जो इवेंट की डिटेल्स होती हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्ट्रेस आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Vanessa Events is here to take that stress for you. ताकि आप बना सकें अपनी खूबसूरत memories and they will take care of the rest. They make planning simple by bringing everything together in one place. From venue selection and beautiful decor by signature events to photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. तो सब कुछ आपका जो है वो Vanessa Events हैंडल कर लेंगे. आप सिर्फ आइए, इंजॉय कीजिए और अपनी मेमोरीज बनाइए. जो इवेंट आपका हो रहा है उसको आप जो है अपनी खुशियों से चार चांद लगाइए. और कोई भी आपका सवाल है तो मैं आपको नंबर देती हूँ जी. हरी बसेरा साहब जो कि Vanessa Events में आपके साथ आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं, दैट नंबर इज 4694428770. वंस अगेन, हरी बसेरा साहब को कॉल कीजिए एट 4694428770. कोई भी आपके जहन में सवाल है, इवेंट आ रहा है आपका, दिस इज द नंबर टू कॉल. दिस इज Vanessa Events, योर सेलिब्रेशन पार्टनर, मेकिंग थिंग्स इजी एंड ब्यूटिफुल फॉर यू. तो ये तो हुई ये बात, और अब अगला गाना आपके लिए लगा रही हूँ मधुबंती बख्शी की आवाज में. और आप ये जो है सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अभी लेटेस्ट उनका जो इंटरव्यू आया है उसमें मधुबंती क्या कहती हैं.

मधुबंती बागची ने 2019 में अपने यू नो करियर का आगाज किया एज इन प्लेबैक सिंगिंग का फ्रॉम द सॉन्ग तन्हा तन्हा, जो कि ट्रूली योर्स ट्रूली में पिक्चराइज हुआ. लेकिन उन्हें शोहरत मिली गाने आज की रात की वजह से, जो कि उनका स्त्री 2 में आया था, एंड दैट वाज इन 2024. और अभी लेटेस्ट जो इंटरव्यू आया उनका कहना है कि आज की रात के बाद वो हिट हो गई एंड शी मेड श्योर दैट शी डिड नॉट गेट स्टक डूइंग द सेम काइंड ऑफ सॉन्ग्स. और उनको ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट को अपनी आइडेंटिटी तो बनानी चाहिए, कोशिश भी कर रही हैं मधुबंती अपनी आइडेंटिटी बनाने की, लेकिन उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री आपको, जब आपका एक खास किस्म का जॉनर और एक खास किस्म का गाना हिट हो जाता है स्टाइल में, तो देन द इंडस्ट्री ट्राइज टू पुश यू इन अ बॉक्स और उसी तरह के गाने वो आपसे गवाती है जब तक कि आप पूरी तरह से वो आपको और आपके उस स्टाइल को कैश ना कर ले. सो वो कह रही हैं कि मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस बॉक्स में ना आऊँ. कई बार जो सुपरहिट गाने होते हैं वो उसी काइंड ऑफ शेड्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की रात से उनका हिट होना शुरू हुआ और उसके बाद दैट वाज इन 2004, फिर आया जी उई अम्मा और फिर लव यापा हो गया. फिर एक और बड़ा सुपर हिट गाना उनका जो है ये रंबा हो आप सुन रहे हैं. इसी फिल्म से शरारत वाज एन एक्सट्रीम हिट और साथ ही साथ आशिकों की कॉलोनी और अब लेटेस्ट उनका हमें जब तलक सुनने को मिला कॉकटेल 2 से. सो इनकी मधुबती की बात हो रही है और आज की रात की बात हो रही है, तो आज की रात को प्ले किए बगैर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता. दिस इज आज की रात फ्रॉम स्त्री 2.

और अब वक्त आ चला है आपको वेदर अपडेट देने का. वैसे आपके लिए वेदर करेंसी और ये सारे अपडेट 4:30 के बाद आते हैं, लेकिन मंडे है जी. मंडे इज वेरी स्पेशल बिकॉज हमारे साथ 4:30 से 5 बजे तक कनेक्टेड होंगे संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेस. ही विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस लाइव रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल या फिर फैमिली लॉ या फिर इमिग्रेशन लॉ. कोई भी आपका सवाल है आप उन्हें लाइव कॉल कर सकते हैं राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनी शेयर रेडियो एंड ही विल बी एबल टू टेक योर क्वेश्चंस लाइव. और आपको ये भी बताती चलूं कि अगर मैं आपको होल्ड पे डालूं और आपको उनकी आवाज आ रही है कि वो किसी प्रीवियस सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो अपनी लाइन को, वो जो अपना स्पॉट है लाइन में, उसको बरकरार रखिएगा. लाइन ड्रॉप मत कीजिएगा बिकॉज इफ यू कैन हियर हिम ऑन योर फोन देन दैट मींस यू आर नेक्स्ट इन लाइन टू आस्क योर क्वेश्चन. बट दैट विल बी अबाउट 15 मिनट्स बिफोर मिस्टर माथुर इज हियर ऑन एयर. एंड लेट्स बिगिन विद आवर वेदर अपडेट व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. आज है जी मंडे जुलाई द 13th, 4:19 पी एम इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकनी में है 86 डिग्रीज. हाउ एवर इट फील्स लाइक 94 राइट नाउ. 30% चांस ऑफ शार्स है इस वक्त. दिन रहा मोस्टली क्लाउडी और कहीं कहीं आपको शार्स भी देखने को मिले और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी. मिड 80s में टेम्परेचर रहा, जबकि शाम जो है वो रहेगी मोस्टली क्लाउडी. 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स शाम में भी हो सकते हैं. ये पूरे 2-3 दिन कुछ इसी तरह की सिचुएशन रहने वाली है और ह्यूमिड होगा मौसम विद लोज इन द लोअर 70s. पोलन काउंट इज एक्सट्रीमली लो टुडे 0.5, सो बड़ी अच्छी खबर है. जबकि यूवी इंडेक्स इज ऑफकोर्स हाई. गर्मी इतनी है, शिद्दत इतनी है गर्मी की, 11 इज द काउंट ऑफ यूवी इंडेक्स. सो प्लीज कीप योरसेल्व्स हाइड्रेटेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सनराइज आज का हुआ 6:27 AM पे इन द मॉर्निंग, जबकि आज का सनसेट होगा 8:37 PM. दिस वेदर फोरकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

जी हाँ, कनिका कपूर और मीका सिंह की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना। और आगे बढ़ते हुए आपको करेंसी की अपडेट देती चलूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है जी कि जो तमाम लाइव अनाउंसमेंट्स एज वेल एज द इंटरव्यूज दैट वी डू हेयर ऑन आर शोज एट फन एशिया रेडियो आर पेड एडवर्टीजमेंट्स एंड डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द ऑफिशियल व्यूज ऑफ द रेडियो स्टेशन नॉर द आरजे। विद दैट अपडेट वी आर टॉकिंग अबाउट द करेंसी अपडेट के यूएस डॉलर आज कहां स्टैंड कर रहा है। सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.87 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74, इंडियन रुपी 96.01 पे स्टैंड कर रहा है, कनेडियन डॉलर 1.41 पे ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तानी रुपी 278.12 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर, जबकि नेपाली रुपी 153.69 पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ बांग्लादेशी टका 123.33 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर। And gold price update before we go on to our next song. And right now, according to goldprice.org, gold price per ounce hai $4,001.52. Jabke 1 gram sone ki keemat is waqt 128, yani ki $128.65 hai. Kal ki nisbat 1 gram sone ki keemat mein $2.77 ki kami dekhne mein mili, jabke 1 ounce sone ki keemat mein $86.13 ki kami देखने को मिली। But that's pretty much all that I have for you, where your currency or your finance matters, right here on Sunehri Kiran.

0: Utilities, retail stores or office buildings. Competitive pricing, personalized energy solutions or exceptional customer service. Tara Commercial Energy, powering Texas businesses for over two decades. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Tara Commercial Energy, jo aapke business ko roshan rakhe.
1: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
2: इट्स लॉसन।
1: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
2: इट्स लॉसन।
1: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
3: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
0: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, सबसे बड़ी खबर, उनका AI powered प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

भाई ये गाना तो फिट हो रहा है आजकल इंडियन टीम के ऊपर, क्योंकि 5 मैच हार चुका है जी इंग्लैंड के साथ। उससे पहले ऑफ कोर्स आयरलैंड ने भी कपड़े उतार दिए हमारे, और यही हाल है जी। बट ऑन द अदर साइड लुक एट द इंडियन वुमेन टीम, दे आर डूइंग सो वेल, और लॉर्ड्स में जीत चुकी हैं जी एक गेम ऑन द सेम डे एज हमारे गंगुली दादा थे ना, उन्होंने जीता था सेम डे, विच वॉज द 13th of July 2002 एंड 13th of July 2026 द इंडियन वुमेन्स टीम डिफीटेड इंग्लैंड एट द लॉर्ड्स, विच इज़ डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट। साथ साथ फिल्म आने वाली है गंगुली साहब की, अब इसको प्ले करेंगे देश, क्या नाम क्या उनका भूल गया, खैर बताता हूँ आपको। आप सुन रहे हैं जी फनी जी रेडियो 104.9 FM ऑल द वे टिल 7 o'clock इज़ गोना बी मी गिविंग यू कंपनी, थैंकिंग द ऑलमाइटी फॉर येट अनदर डे जहाँ मिला है जी मुझे एक मौका टू कम अलॉन्ग हियर एंड लिसन टू आपकी गपशप, कुछ हमारी बातें एंड लवली लवली गानों का साथ रहेगा। आई हैव सम गिव अवेज कमिंग अप फॉर यू एज वेल, फॉर नाउ आई हैव वन ट्रैक लाइंड अप फॉर यू ऑल बिफोर वी हिट द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टूडियो की लाइन हमेशा खुली है, इफ यू सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे एनिवर्सरी एनी जॉयस मोमेंट गिव मी अ कॉल, आई'd लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर joy, here we go.

0: What a high energy game we saw this Saturday between, of course, Argentina and Switzerland. It was a crazy, crazy game. Argentina winning that game with 3-1 to Switzerland. And for some reason, yaar, mujhe laga ke half time ke baad Switzerland to aise dikh raha tha jaise bilkul thak gaya ho. Glucon D ki kami hone lag padi. I think the heat in the United States didn't work well. Ya fir jo khana leke aaye the shayad usme kahin na kahin kamzori reh gayi because yahan ka khana unhone khaya nahi. So maybe because they didn't have the American burger, they didn't have the strength left in them. But I am going to be looking out for the game which is happening tomorrow, France and Spain. Uske baad England versus Argentina, and then we hit the final. For now, it is a short commercial break. Don't go anywhere. Yun gaya aur yun aa raha hu wapas aapke paas, only on Funasia.
1: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
2: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
1: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
3: प्लीज डोंट सी यू यूज place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt. And the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Documents ya parcel bhejni hai?
9: हाँ.
8: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ.
8: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ.
8: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
11: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
13: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
11: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में सब संभाल लेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

दुनिया भर में आलसी लोगों की संख्या यानी कि इन द होल वर्ल्ड द लेजी पीपल्स नंबर इज 245,30,75,248 रुपीज, और उनमें से कुछ तो इतने आलसी हैं कि उनको ये पुराना नंबर भी नहीं ध्यान से सुना होगा आपने। हट पांच बज गए 25 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, मंडे की हो गई है शाम, जुलाई की 13 तारीख। हाउ यू DFW, आई होप यू डूइंग लवली वेर एवर यू आर। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, वुमेन्स टीम ऑफ इंडिया हैज डन सो मच सो वेल इन द लॉर्ड्स, कि आज जो खत्म हुआ कल राधा आज ही टेस्ट मैच था जी, एंड इंडिया बैटिंग फर्स्ट गॉट टू 285, देन इंग्लैंड केम आउट टू बैट 170 ऑल आउट, देन केम इंडिया 341/7 डिक्लेयर्ड एंड देन 186 ऑल आउट फॉर इंग्लैंड। कूडोज टू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। अब कल हमारे मेल क्या करेंगे वो देखने वाली चीज़ होगी। वैसे तो विराट कोहली साहब हैं एंड यू नो द अदर धुरंधर्स आर बैक इन द टीम प्लेइंग द वन डे फॉर इंडिया, बट अभी इंग्लैंड का जोश जो है वो तगड़ा भैया, देखेंगे होता है क्या। फॉर नाउ आई एम गोना प्ले सम लवली ट्रैक्स एंड इफ यू आर वांटिंग टू कॉल मी नाउ द स्टूडियो लाइंस आर ओपन 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। और आपसे एक बात पूछनी है आज मुझे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है जी। एक पतिदेव ने अपनी बीवी से पूछ लिया इसका मतलब क्या है, अब आप लोग मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू इसका मतलब है क्या, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। स्टूडियो का नंबर नहीं है पता तो लिख लो 972-235-5555।

0: टेकन फ्रॉम द मूवी अल्फा, जो कि बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, मैंने देख ली है यार, अगर आपने नहीं देखी है जरूर चेक आउट कीजिए। आई थिंक द स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो है फिल्म, एक्शन पैक्ड है, लड़कियों ने कमाल का काम किया है। बट टू नो मोर यू हैव टू ऑफ कोर्स वॉच द मूवी। फॉर नाउ लेट्स गो टू द पीपल दैट वी आर कनेक्टेड विद। फनेजिया, गुड इवनिंग, हु इज दिस?
1: गुड इवनिंग, रफीक बात कर रहा हूँ।
0: रफीक भाई कैसे हैं आप, सब ठीक है?
1: बिल्कुल ठीक है भाई। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जो है उसका रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, वो कामयाब करेगा।
0: बिल्कुल करेगा सर, मुझे लगा आप कहने लगे कि मारे ना पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस बात में भी कुछ ना कुछ बतंगड़ बनाएं। तो हाँ जी रफीक भाई, वो भी आ रहा है क्योंकि उसके बिना मजा नहीं ना आता पूरा लाइफ का। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, मतलब साइड पे होके सड़क पे सोचना चाहिए, डब्बे में बैठ के वैसे भी कुछ नहीं मिलता। फनेजिया रेडियो, हु इज दिस?
2: हाँ जी, विशाल बात कर रहा हूँ।
0: विशाल जी कैसे हैं, सब ठीक है?
2: सब बढ़िया एकदम, आप कैसे?
0: मैं ऊपर वाला मेहरबान है सर, बताओ अगर बीवी ये पूछ ले कि हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, मतलब क्या है, तो क्या मतलब है इसका?
2: तो मतलब इसका मतलब ये कि शादीशुदा आदमी को बस भगवान ही मदद कर सकते हैं।
0: शादीशुदा आदमी को भगवान ही मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बट मैं आपको फिर बताता हूँ कि हमारे वर्जन में इसको क्या बोला जाता है। गुड वाला इवनिंग फन एशिया रेडियो, कौन
3: जी? हेलो।
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मेरा नाम बशीर अहमद है, पहली मर्तबा कॉल कर रहा हूँ आपसे।
0: बशीर साहब कैसे?
3: धन्यवाद, नमस्ते, सलाम, क्या
0: सलाम,
3: हाल
0: सलाम,
3: है
0: सलाम, बहुत बढ़िया, आप कैसे सरकार?
3: तो आपने ये जो पूछा हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, ये उर्दू का भी बड़ा आसान है, वैसे आया ये पर्शियन है हिम्मत और मदद, तो इसका मतलब आसान है। ऐसा है शुरू में हिम्मत है मर्दा, मतलब मर्दों की हिम्मत से काम लें तो अल्लाह की खुदा की मदद आ जाएगी, भगवान की मदद आ जाएगी।
0: सर जी बात ऐसी है, बात ऐसी है सर, मैं
3: अपनी बेगम को कहता हूँ हिम्मत है औरता मदद खुदा।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, अगर बीवी के सामने ये बात हो जाए कि हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, तो उसमें मतलब ये निकल रहा है बशीर साहब कि अगर तुम बीवी के आगे ज्यादा हिम्मत दिखाओगे ना बड़े भैया, तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, मदद नहीं कर पाएगा खुदा भी।
4: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा।
0: This part of the show is brought to you by Malabar Gold and Diamond. If you're looking to add sparkle to your life, why not make it the best with Malabar Gold and Diamond? Head to their showroom right now in Frisco. They are open on Preston Road. This destination is a place which will definitely make you say, wow, मैं कहाँ आ गई या कहाँ आ गया। Usually, just like you know, जैसे आप इतनी खूबसूरत हैं ladies, उसी तरह का जैसे feeling आता है ना, you're so beautiful, so elegant, just looking like a wow. That wow would be 10 times wowed because of the jewelry that Malabar brings to the table, from beautiful rings, earrings, to dazzling necklaces and contemporary diamond styles. Find the perfect piece for engagement, anniversaries, celebrations, or for your necklaces. Here we go, Malabar Gold and Diamond is the place to be.
4: Ki dard ka asar na ho. हमने समझा था इश्के मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

What a lovely vibe to this track, which is the Do, Baby Do Die. Do is the movie, Ishq Meena 2.0. What a wonderful mix this one is. Bada refreshing sa mix hai. Vaise toh, it is a remake, but I think it's a very refreshing one. You're listening to your evening drive time show. July 13th is the day today, and dekhte hi dekhte hum 7th month ke bhi aakhir mein aa chuke hain bhaiya. Iske baad thoda hi time hai, phatafat se aayegi Diwali, Dushehra, and then the New Year is going to knock on our doors, and of course, the most wonderful time of the year, which is Christmas, is going to be around as well. Toh bhaiya ji, dekhte hi dekhte waqt nikal raha hai. Aapne कुछ कुछ प्लानिंग कर रखी थी तो उसको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि और कोई आएगा नहीं उसको कंप्लीट करने हैं. अनफॉर्चुनेटली जो भी आपके ख्वाब हैं वो आपको ही कंप्लीट करने पड़ेंगे. एंड टू डू दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेल एंड एवरीथिंग अराउंड यू. आपकी सोसाइटी में जो भी चलता है ना भैया, चाहे वो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपका टेस्ट है, आपके फ्लेवर्स हैं, आपके शौक हैं, पेंटिंग, यू नो, ड्राइविंग, इंजॉइंग नेचर, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू. सो मेक श्योर कि सबसे पहली चीज या सबसे पहला इंसान जिसका आप टेक केयर करते हैं इज नोबडी एल्स बट यू, बिकॉज इफ यू आर वेल यू आर हैप्पी. अंदर से आप खुश हैं, आपके आसपास वालों को खुशी देना आपके लिए आसान होगा. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय अटॉर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम. इफ यू एवर स्लिप एंड फॉल या आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपका नेक टूट जाए नेकलेस से, इफ योर नेक ब्रेक्स और एनीथिंग एल्स लाइक दैट, वैसे तो खुदा ना खास्ता कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम ना आए, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम एंड यू नीड एन अटॉर्नी, द वन नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर इज अटॉर्नी ओमर ख्वाजा. द वेबसाइट इज attorneyomar.com. नो विन नो फी पे काम करते हैं. दे मेक श्योर दैट यू आर वेल कॉम्पनसेटेड फॉर वट एवर द एक्सपेंसिस दैट यू हैव टू बेयर, चाहे वो गाड़ी का रिपेयर हो, चाहे हो आपकी जॉब लॉस या एनीथिंग टू डू विद योर मेडिकल बिल्स. दे विल मेक श्योर दे टेक केयर ऑफ दैट. आई एम गोना कीप द वाइब अप विद द नेक्स्ट ट्रैक, एंड दिस वन इज अ लिटिल ओल्डर, बट आई थिंक यू ऑल आर गोना लव इट. कहते हैं ना, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और वो कहते हैं एक और चीज़ कहते हैं कि अगर मुझे तुम कभी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा. ये कहते ही हैं, बस मरते नहीं हैं इनमें से कोई भी.

0: हमारी शक्लें देख लो और बीवियों की शक्लें देख लो, बीवियां इतनी सुंदर, हम ठीक ठीक ओके ओके सही, और कई जगह तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ होता है। बाद में समझ आती है कि जब भी कोई अच्छी फसल होती है ना, अच्छी फसल गुड यील्ड, तो अच्छी फसल को कीड़ा ही खाता होता है। एक ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Ritesh, kabhi socha hai kal agar tum nahi rahe to mera kya hoga?
5: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
4: Sach? Ya phir court decide karega?
5: Wait, what?
3: Yes, agar proper estate plan nahi hai. तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है।
6: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में, the right way with estate planning.
3: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए। Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
12: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
11: Your new destination has arrived.
13: बेटा, 95% आए?
1: हाँ मम्मी.
13: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
13: हाँ. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, सारे accounts updated.
5: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
1: वीकेंड का प्लान?
15: मन अभी तक नहीं मना। बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड इज अ न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन. अगर आपने नहीं ट्राई किया है, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट बिकॉज दे आर कुकिंग अप सम यमिलेशियस फूड. यार एक तो खाना बहुत अच्छा है और देसी स्टाइल के साथ एक जो उनका टच है, आई लाइक दैट. एंड हर बार कहता हूँ कि वहाँ पे जाएंगे तो एक उनका आइटम है जिसको बोलते हैं जी गोभी मंचूरियन. एंड डू नॉट गेट दैट गोभी मंचूरियन इन योर माइंड जो आपने पहले खाया हुआ है. इट लुक्स डिफरेंट, इट टेस्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर गोभी मंचूरियंस, बट इट इज सिंपली वाओ. इफ यू हैवन्ट हैड इट, गो चेक इट आउट. दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड, राइट ऑफ शैलो एंड जॉर्ज बुश. And they have some great deals for you as well. Chahe naan ho, kebabs ho, velvety curries ho, they've got them all for you. Once again, Tandoori Flame, located in Garland, Shiloh and George Bush. आपको पता है ये फैक्ट भी है और आपने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया, जितने भी ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो बीमारियाँ हैं ना, ये मादा मच्छरों से फैलती हैं. ठीक है, ऑल दीज डिजीज दैट आर देयर. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडी है, सच्ची में अभी यह लिखा हुआ है. आपने कभी गौर नहीं किया तो ये स्टडी में लिखा है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मादा मच्छर से फैलती है. अब मर तो बेचारे देख लो, यहाँ पे भी शरीफ ही निकले. इनोसेंट. राइट आफ्टर दिस ट्रैक देयर इज अ गिव अवे कमिंग अप.

0: All right, let's see who do we have with us right here on Fun Asia Radio. Good evening and welcome back to this song. Ke baad vapsi hai ji and vapsi kis baat ke liye taki hum give away this again to the two lucky winners here. Good evening to you, Fun Asia. Who is this?
1: Hello, I am Rajesh.
0: Rajesh ji, kaise aap? Sab theek hai, bade bhai?
1: हाँ सब ठीक है, आपकी कृपा है।
0: अच्छा, बचपन में गिरे थे आप कभी?
1: नहीं,
0: बचपन में गिरे
1: नहीं, ऐसे हो गया।
0: बचपन में गिरे ही नहीं आप?
1: नहीं,
0: किसी की नजरों से? चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गिरा और गिरना भी नहीं चाहिए यार। वैसे लाइफ में गिर जाए ना, कोई बात नहीं, साइकिल से गिरो, सड़क पे गिरो, पर नजरों से किसी की कभी मत गिरो। आप बताइए सर, आपको मालूम है मैं किस सिंगर की बात कर रहा हूँ जिनका बर्थ नेम इज सलीम शहजादा, पंजाबी इंडस्ट्री से बिलोंग करते?
1: मास्टर सलीम।
0: मास्टर सलीम कहते हैं। और आपने अपना नाम क्या बताया था? राजेश जी।
1: राजेश, यस।
0: राजेश जी, होल्ड द लाइन, लेट्स सी इफ यू हैव द राइट आंसर और नॉट। कौन है मेरे साथ नेक्स्ट? गुड इवनिंग टू यू, फन एशिया, हु इज दिस?
2: दिस इज आरबी मारवन जी, इज इट मीका सिंह?
0: दिस इज हु? आरबी,
2: आरबी
0: लाइक आर एंड बी टुगेदर,
2: आर एंड बी लाइक
0: और डू यू स्पेल इट?
2: रॉबर्ट बेकर
0: और आरबी। अच्छा, आरबी, रॉबर्ट बेकर, आरबी साहब। मुझे लगा ए आर बी वाई तो नहीं है, आरबी लाइक द ब्रांड आरबीज, या फिर जैसे हमारी इंडिया में सब्जी होती है एक अरबी, बट आप हैं आरबी। विल कीप द आरबी। आरबी जी, बताइए, डू यू नो द नेम ऑफ दिस आर्टिस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट?
2: मैंने कहा मीका सिंह।
0: मीका सिंह, मीका सिंह कहते हैं आरबी। देखते हैं आरबी वाज राइट और नॉट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर हियर। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, आपका रेडियो का वॉल्यूम कम, आपका वॉल्यूम ज्यादा। हु इज दिस?
3: दिस इज चंदन।
0: चंदन भैया कैसे हैं?
3: बढ़िया साहब, आप कैसे हो?
0: मतलब आप ही थे वो जिसमें गाने में उन्होंने इतना पॉपुलर किया था, चंदन साहब अदन, मतलब चंदन जैसा शरीर लेके घूम रहे थे। अच्छा चंदन, चंदन साहब ये बताइए मुझे कि सिंगर का नाम क्या है जिसका नाम बर्थ से था सलीम शहजादा?
3: सर ये लेट पूरन शाह कोटी जो उस्ताद हैं उनके बेटे मास्टर सलीम हैं।
0: एब्सोल्युटली राइट है जी, मकीनी जा सकते हैं आप।
3: थैंक यू सर, जा सकते हैं।
0: होल्ड कीजिए मेरे लिए। करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली मास्टर सलीम, जैसे इन्होंने कहा जी, साबर शाह कोटी साहब, पूरन शाह कोटी साहब के बेटे, लेट सिंगर पूरन शाह कोटी साहब, एंड वर्सटाइल सिंगर। बहुत डिफरेंट इनकी सिंगिंग का स्टाइल है, एंड ही सिंग्स इन क्वाइट अ हाई पिच टोन, दैट इज नन अदर देन मिस्टर मास्टर सलीम। बॉलीवुड के लिए कुछ गाने गाए इन्होंने, जैसे कि ये द वन यू हर्ड, माँ द लाडला बिगड़ गया एंड मेनी मोर। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड विश मिस्टर मास्टर सलीम अ वेरी वेरी हैप्पी birthday from the team here at Fun Asia.
4: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
5: Official tax and finance partner, AG FinTax.
4: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
5: In association with Passion Health Primary Care.
6: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
7: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
8: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
9: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
10: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
11: Heere moti, main na chahu.
12: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
13: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
14: क्या?
13: सैलरी बंद हो जाती है
14: और बिल्स बंद नहीं होते।
13: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
14: मतलब
13: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
15: द वेल्थ टैक्टिक, smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
16: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
17: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
16: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
17: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
18: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
16: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
18: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
19: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
20: It's Lawson.
19: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
20: It's Lawson.
19: Daddy, what is the law?
21: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
22: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
23: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
24: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
25: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.

Absolutely, Bindaz Bolo Ji, Namar Bindaz Bolo. Welcome back to your Evening Drive Time Show, the second hour right here, and it's 6:06 in the studio clock. I'm going to be with you till 7 o'clock this evening. July ki 13 tarikh hai. Aaj meri chachi ka janmdin hai yaar. Unka naam hai Alka Das, ho gayi shaadi ke baad. Pehle unka naam tha Alka Beri, Ludhiana ki pedaish. फिर चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे चाचे से आश की और उसके बाद शादी, उसके बाद दो नन्हे मुन्ने जो मेरे कजन हैं जी, मार्शल एंड मॉरिस. वी हैव अ लवली लवली फैमिली एंड शी इज अ लवली लेडी. तो चाची जी, अगर आप नहीं भी सुन रही हैं, दिल से आपको हैप्पी बर्थडे एंड टू ऑल दी अदर्स दैट आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे और एनिवर्सरी और जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ लाइक मी. क्योंकि मैं तो हर दिन उठ के ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ यार कि एक और मौका, बिकॉज यू नो द फैक्ट्स आर दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट टू लिव दिस डे एंड डिडंट गेट टू लिव दिस डे इन दिस वर्ल्ड व्हेन वी सी millions of people go through good success and some go through their own problems. We all have to remember har bande ki journey apni apni hai, but in this process we have to be thankful for what is around us, what is with us and who is with us, like you all. I thank you all for being a part of the Fun Asia family. Taking you to the next gana, usse pehle the Disney Moana movie is out now, and if you haven't seen it, go check it out. Good reviews to this movie, of course. Isme hamare wo hain The Rock, and he is playing a role in that movie. Kya naam tha unka? The mythical demigod. But I love animated movies and Disney in all. So if you haven't taken your kids to Disney's Moana yet, make sure to check it out. Here we go, one more track celebrating none other than Mr. Master Saleem here. The studio lines are now open. Agar aap call kar rahe the, now your calls will be connected. Happy birthday, Master Saleem.

लेडीज ना हमारे पे पता है थोड़ा सा जो रोब क्यों रखती हैं डाल के, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये बिगड़ ना जाए, जैसे माँ होती है ना, माँ उनको बच्चों का होता है अपने कि बच्चा ना बिगड़ जाए, उसी तरह माँ का जो रोल है वो शिफ्ट होकर बीवी में आ जाता है, और बीवी को हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं मतलब ये गुमराह ना हो जाए। वैसे तो हमें पता है कि हम अच्छी राह चल रहे हैं, फिर भी ये जो शादीशुदा आदमी है ना, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक मौका पल पता कौन सा होता है, सबसे डरावना पल, जब पत्नी फ़ोन करके कहती है ना कि घर जल्दी आना, आपसे ना ज़रूरी बात करनी है। बंदा पूछता है क्या बात करनी, कहती नहीं घर आओ फिर बताऊंगी। बाई गॉड उस पल में ना घर पहुंचते पहुंचते वो जो 10-15 मिनट होते हैं ना, उसमें हमें अपने सारे जन्मों के अगले पिछले आगे पीछे किए हुए कांड याद आ रहे होते हैं, कौन सा वाला आज उठाया जाएगा मुद्दा। खैर इसी को तो लाइफ कहते हैं, इसके तो मज़े हैं ज़िंदगी में, अगर ये सस्पेंस ना रहे तो फिर कुछ मज़ा आएगा नहीं भैया। टेकिंग यू टू द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर, उसके साथ साथ एक सवाल है आप लोगों से, कहते हैं कि हमारे डैलस फोर्ट वर्थ की जनता जो है बड़ी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये मानसून है, मानसून है ना, ये मानसून जो है ये इसका एक्चुअल मतलब क्या है? एक तो हो गया चलो बारिश, हमने मान लिया कि लोगों ने कहा बेटा मानसून की इंग्लिश हो गई बारिश, बट मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से कि ये मानसून का अगर कोई और मतलब होता तो क्या मतलब होता मानसून का, मतलब बताओ, सोचो थोड़ा सा दिमाग का ना अपना मीटर ऑन करो, और मेरी तरह आउटसाइड ऑफ द डब्बा जाके सोचो कि ये मानसून अगर बारिश ना होती, मतलब इन्होंने कह दिया हमने मान लिया है ना, बट मानसून अगर बारिश ना होती या अगर मानसून का कोई और मतलब होता तो वो क्या मतलब होता? दैट इज वॉट यू हैव टू टेल मी, थिंक थिंक थिंक, गिव मी गुड आंसर, लेट्स हैव सम फन राइट हियर ऑन फन एशिया।

0: ऑल राइट right, देखते हैं भैया कौन है हमारे साथ जो इतने टैलेंट को अपने एक्सप्लोर करना चाह रहा है। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, जरा रेडियो को सुनने वालों को अपना नाम बताइए, अटेंडेंस दीजिए। हेलो, शुरू के बाद आपकी ना आवाज बीच में कट रही है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज वालों का पुराना टाइम का बिल ना दिया हो, किट किट किट। दोबारा से अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम ज्योति है।
0: कैसी हैं आप ज्योति जी, सब ठीक है?
1: एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: अच्छा है, चल रहा है, लोग रोटी पानी चल रही है, सैलरी मिल रही है टाइम से, मालिकों का बहुत धन्यवाद है। अच्छा,
1: इम्पोर्टेंट है,
0: बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसके बिना मेरे दो छोटे छोटे घर में कुत्ते हैं बेचारे भूखे मर जाएंगे। आप बताइए कि ये जो चक्कर है मानसून, ये मानसून का अगर मानसून बारिश ना होती तो क्या होता?
1: देखो मावन, अगर तो मैं इंग्लिश में स्पेल करूं तो MANSOON, जब कहती है ना कि जल्दी घर आओ, तो डायरेक्टली कह सकती है मैनसून,
0: थोड़ा जल्दी घर आओ, मैनसून। अच्छा अच्छा है ज्योति जी, अच्छा है, डिफरेंट है। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज अभिजीत।
0: हेलो अभिजीत, कैसे हैं? अभी अभी जीत के आए हैं?
2: हाँ, अभी अभी जीत के आया हूँ।
0: कहाँ से, बीवी से लड़के तो नहीं आए ना? अच्छा, आपको पता है, आपको पता है एक और बात, पहले लड़के लड़के से याद आया कि हमारे को बार बार लड़कियां ये कहती हैं कि लड़के आए हैं, फिर कई बार लड़के लड़के आते हैं, इसीलिए उनको लड़के कहते हैं क्योंकि वो लड़के आते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास वापस सरकार, कि ये मानसून, अगर मानसून बारिश ना होती तो ये क्या होता?
2: ये होता पति।
0: पति होता ये, क्यों?
2: क्योंकि जो मौन रहता है और सुनता भी है उसे मानसून कहते हैं।
0: मौन रहता है और जो सुन भी रहता है बेचारा, डैडी पड़ा है, मतलब लिविंग मम्मी है। आपका नाम क्या था बड़े भाई?
2: अभिजीत।
0: अभिजीत, देखते हैं अभिजीत, इसमें हार और जीत तो नहीं है, पर अगर आप जीत गए तो आपको जरूर बताऊंगा। देखिए बात पता क्या होती है, ये जो मानसून है ना, मानसून ये अगर, चलो आप लोग और सोचो ना थोड़ा, इतनी जल्दी हार मान लोगे यार? नहीं, थोड़ा सोचो, कुछ दिमाग लगाओ कि मानसून को अगर बारिश ना होती तो मानसून क्या होता। अब हर चीज़ मैं बताऊँगा तो आप क्या करेंगे? वो कहते हैं ना, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, बोलो दुनिया वालों, बोलो क्या होता अगर मानसून ना, बारिश ना होता तो मानसून क्या होता? ये जो सब कहते हैं ना, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहो ना लोगों, मैं सुनना चाहता हूँ।

तो बताइए लोग अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ा के कि भैया ये मानसून अगर बारिश ना होता तो क्या होता। अगर आप हार गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है मानसून, अगर बारिश ना होता तो मानसून क्या होता, बताता हूँ।

0: ऑल राइट आए हैं मेरे पास कोई धुरंधर, देखते हैं ये कौन है। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, कौन बोल रहा है?
1: हेलो बारू भाई, दिस इज अभिनव।
0: अभिनव, अभिनव जी कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया,
0: बढ़िया।
1: मैं
0: बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, बस जो बचपन की चोटें हैं वो आपको पता ही है, सिर में लगी थी वो थोड़ी है। अच्छा अब आप ये बताइए कि सर जी, ये मानसून, अगर बारिश ना होता तो मानसून क्या होता?
1: मेरे को लगता है मानसून को अगर थोड़ा सा संधि विच्छेद करें
0: तो छेद छेद कर दे, छेद नहीं करना है, बारिश बादल पानी पड़ जाएगा। अच्छा अगर शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि क्या होता, चलो फटाफट।
1: मंडे सून, यानी आप फ्राइडे को ऑफिस का बैग करते हो और रखते ही वीकेंड खत्म हो जाता है और आप कहते हैं
0: मंडे सून। चलो मान लिया आपकी बात, अब चलता हूँ लास्ट कॉलर की तरफ, फटाफट बताइए आपके हिसाब से मानसून अगर बारिश ना होता तो क्या होता?
2: सर मानसून में अगर बारिश नहीं होता तो मानसून संडे होता, क्योंकि उसमें मंडे सून आ जाता।
0: नहीं, ऐसा होता कि उसको तोड़ो तो लिखा है मान और सून, इसका मतलब है ना किसी की मान ना किसी की सून, मानसून।
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: मामू देखो क्या हो गया।
7: ओ क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
7: कोई जर्मन का कमाल है,
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
7: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स Even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

all my single girls and boys, the single girls and boys and younger teenagers and you know early young adults, आप लोगों को ना मैं एक बात बताना चाहता हूँ. यू विल थैंक अंकल मार्विन लेटर. ओके, आई एम गोना टेल यू द फैक्ट. होता क्या है कि ये जो आपके माँ बाप और आपके बाकी रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, यू नो, यू सी 25th एनिवर्सरी, यू सी 50th एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एंड पीपल आर लिविंग एंड यू नो हस्बैंड वाइफ वेरी हैप्पी. एंड व्हेन यू आस्क देम कि इतने साल आपको हो गए, कैसा लगता है, तो वो जब कहते हैं ना कि इतने साल कैसे बीत गए, इसका तो पता ही नहीं चला. मैं तुमको बार बार बताना चाहता हूँ कि इनकी बातों में मत आना ब्रो, पता चलता है, एक एक पल का पता चलता है. और ये पता ना रोज पता चलता है, बाय गॉड कह रहा हूँ, हार्ट की कसम, बस तुम समझ जाओ. थैंक अंकल, समझ गए ना बेटा. हाँ, और ये ना ऐसे कई लोग बोलते हैं कि शादी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कहता जी मैंने सुना है कि बर्तन धोने पड़ते हैं. ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी हो जाते हैं, प्रॉब्लम कपड़े धोने में आती है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. 6:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में. आज है जुलाई की 13 तारीख, मंडे का दिन आ गया है. घूम फिर के ये चाइनीज वाला वीकेंड हटा इसको, विषम 2 दिन में खत्म हो जाता है वीकेंड. दिस इज नॉट गुड. वी शुड गेट वीकेंड मेड इन इंडिया, है ना, लॉन्ग लास्टिंग और समथिंग इन USA. ये छोटा 2 दिन का वीकेंड, नो गुड मैन. I'm gonna be with you till 7 o'clock this evening. अभी जो सेगमेंट आपके लिए आने वाला है, that segment is brought to you by PMJ Jewels Dallas की सबर जो है जी, अब आपका सबर करने की जरूरत नहीं है. You can break that wait that you've been waiting for PMJ Jewelers to land in DFW. They have finally done that. Explore some stunning golden diamond, gold, diamond and bridal collections. कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लुकिंग टू गेट योर डॉटर मैरिड, यू लुकिंग फॉर ज्वेलरी कलेक्शन फॉर दैट, दिस इज द प्लेस टू बी. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा गट्टाबनेनी. PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस विद ओवर 60 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ज्वेलरी क्राफ्ट्समैनशिप एंड देयर एक्सलेंस. गो चेक इट आउट नाउ, ओपन ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, एंड दैट इज PMJ. डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. Today I'm going to play a couple of gaane back to back. Today I'm going to play a couple of gaane back to back. Kya baat hai? Aaj main chalaunga kuch gaane, samajh rahe ho na, back to back. English zyada aa rahi thi. Aaj main kyun chalane laga hu ye do gaane back to back? Because I think aaj ek director jinki main baat karne wala hu, jinhone hame bahut sari filmein di. He passed away in May of 2009. He was born on the 13th of July in 1939. Bahut sari achhi filmein and masala films thi, Nasir Hussain aur Manmohan Desai sahab ke saath and Amitabh Bachchan sahab ke saath jo collection aayi, वो ब्लॉकबस्टर थी फॉर बॉक्स ऑफिस एंड फॉर करियर ऑफ अमिताभ बच्चन एज वेल. पर पहला जो मैं गाना उनकी एक फिल्म से लगाने वाला हूँ, आई एम गोना टेक यू बैक टू द अर्ली बॉलीवुड हियर, बट आई थिंक बोथ द ट्रैक्स आर ब्यूटिफुल एंड यू गोना एंजॉय दिस. हु आर वी सेलिब्रेटिंग एंड रिमेम्बरिंग, बताता हूँ. पहले ये दो प्यारे से गाने.

एंड विद दोज टू सॉन्ग्स के साथ जो मैं रिलेशन निकाल रहा था जी, दैट वाज नन अदर देन मिस्टर प्रकाश मेहरा, जिनका आज के दिन हुआ था जन्मदिन, 13th ऑफ जुलाई 1939 ही पास्ड अवे इन 2009. समबडी हु इज डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड मूवीज फॉर हिंदी सिनेमा बॉलीवुड एंड हैज डन क्वाइट एन अमेजिंग जॉब एट इट. अगर इनकी करियर की शुरुआत करें तो 1950s के प्रोडक्शन कंट्रोलर बनने के बाद 1968 में शशि कपूर साहब के साथ एक फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था हसीना मान जाएगी, जिसका गाना आपने पहले सुना. देन 1973 ही प्रोड्यूस्ड एक और फिल्म अमिताभ बच्चन साहब के साथ जंजीर, जो कि बनी बहुत बड़ी हिट ऑफ इट्स टाइम. एंड देन बिकेम नोन फॉर सम ब्लॉकबस्टर, बैक टू बैक 6 ब्लॉकबस्टर्स आई थी, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल एंड शराबी. दीज वर सम ऑफ द मूवीज दैट बिकेम इंस्टेंट हिट्स राइट अवे. उसके साथ और काफी फिल्में, बट आई वॉन्टेड टू एक्नॉलेज दिस मैन हु हैज गिवन अस सम वंडरफुल वंडरफुल मूवीज अलॉन्ग विद अमिताभ बच्चन साहब. आज के दिन याद कर रहे हैं हम प्रकाश मेहरा साहब को. एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन AG FinTax. इफ यू हैव नॉट डन योर टैक्सेस येट, डोंट वेट एंड गेट इन टच विद AG FinTax. दे नो हाउ टू मैक्सिमाइज योर टैक्स बेनिफिट एंड मिनिमाइज योर लाइबिलिटी. इफ यू लुकिंग फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, इफ यू लुकिंग फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, अ गुड पार्टनर इज ऑलवेज नीडेड एंड दिस कैन बी द राइट वन. विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स, they are known to take care of you very well. Give them a call or simply log on to the website, which is the way nowadays, agfintax.com, taking you or bringing you back to new age music. And this is Badshah.

साहेब, तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: Wonderful track there. Charanpreet and Badshah was in that track. Today also marks Nihal Sareen's birthday, the Indian chess grandmaster and chess prodigy, 13th of July 2004. In 2018, he passed ELO rating of 2600 at 14 years of age, which is tremendous, and made him the third youngest player in history to do so. Today we're celebrating him as well. A very happy birthday to Mr. Nihal Sareen. यार ये कहते हैं ना कदम तरक्की जो है कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, नहीं पूरा बॉडी छोड़ के कदम ही क्यों चूमेगी, बाकी कोई चीज चूम ले।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
6: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
10: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
11: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक नाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, इरविंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

मौसम जरा सा रूठा हुआ है, और अगर मौसम आपसे रूठा हुआ है, यानी कि अगर आपको फ्लू हो गया है, आपको गर्मी की एलर्जीज ने तंग कर रखा है, डेंगू मलेरिया तो खैर दूर ही रहे आपसे, बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी सिकनेस, यू नो वन पर्सन दैट यू नीड टू हैव गुड इज दो लोग एक्चुअली इन अ मैंस लाइफ, दे से टू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर अटर्नी एंड योर डॉक्टर, एंड द डॉक्टर्स एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आर जस्टिफाइंग दैट बिकॉज दे स्पेंड 30 मिनट्स, जब भी आप जाएंगे एक दो मिनट के लिए, हाई हेलो हाई यू डन, देन आई एम गोना इंजेक्ट यू विद एंटीबायोटिक, नो दैट्स नॉट द सिस्टम, दे एक्चुअली गेट टू स्पेंड टाइम विद यू, दे स्पेंड 30 मिनट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, एंड दैट इज every time you visit them, they speak your languages. Agar aapke parents ko kisi language mein specifically comfort hai, get with primary care, they'll make sure that they find somebody that speaks that language. Chahe B12 deficiency ho, chahe ho any fibro scan or anxiety care issues, get with Passion Health Primary Care because they have a location close to you 100%. Itne locations in Dallas Fort Worth mein ki ek na ek aapke shahar mein zarur hogi. Call 214-666-6259 or just Google Passion Health Primary Care and you'll get all the information. With that, it is time to play one more track and this is Shehnaz Gill. And Shehnaz Gill ka gana lagane laga hoon, but Shehnaz and Raghav Jual keh rahe hain bhai kuch na kuch chal laya bhai, ab kya chal laya ye to mujhe nahi malum, par keh rahe hain ki 2023 mein jo film aayi thi na kisi ka bhai kisi ki jaan, usme bhai kisi ka koi aur ban gaya, jaan kisi aur ki koi aur ban gayi, ab wo kaun jaan ban gayi ye to main bhi na janu, kya aap jane ki kaun kiska bana, janu ye main na janu, kya tum jane, jane to mujhe batana ki Raghav aur ye jo madam hai Shehnaz Gill, वाकई में कुछ चल रहा है कि ये बस पारासी कहानियां बनने वाली हैं। अगर आपके मन में है कोई इस बात में क्लैरिटी खुलासा तो मुझे जरूर बताइएगा। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

एक पति ना बड़ा लेट हो गया घर पहुंचे और लेट हो गया ना, तो उसने दारू पी रखी थी। रात का काफ़ी लेट का टाइम था और बीवी ने सोचा आज ना इसको मैं सबक सिखाऊंगी, मैं आज बाहर ना खड़ी हो जाऊंगी काले कपड़े पहन के। तो जैसे ही बंदा घर पहुंचा, उसने देखा बाहर तो ऐसे कोई बंदी खड़ी है। उसने कहा तू कौन है? वो कहती है मैं चुड़ैल। कहता ओह मैं तेरी बहन का पति।

काह को इतने परेशान रहते हो? ओशो की दो बातें सुना करो, कभी कभी मन के भीतर झांकने से बहुत अच्छा लगता है। खैर, मेरी बकबक का टाइम खत्म हो गया जी। शो इज अबाउट टू एंड, दिस इज योर होस्ट बंदाबिंदास मारविंदास, अबाउट टू से बाय बाय गुड नाइट। बजाते जाते हमेशा कहता हूँ भैया अपना ख्याल कौन रखेगा। देखो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई नो आप वो बेटे हो बड़े क्या बड़े नमक हलाल और न वो क्या खुदगर्ज और बड़े स्ट्रांग है जी, कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करूँगा, मेरे माँ बाप ने कितना कुछ किया। हाँ बेटा सब कुछ करो, पर अपनी प्रसन्नता और अपना अंदर का जो खुशीपन है ना, इसको डाई करके किल करके मत करो, क्योंकि जब ये किल करेगा तो धीरे धीरे किल किल किल किल आपके अंदर सिर्फ बचेगी क्या, हंसी खुशी सब उछड़ जाएगा, दुखी रहोगे, मैं काम ही करता रहता हूँ, मैंने इतने दिनों छुट्टी नहीं ली, हाय मेरी पीठ दुख रही है, मसाज कराने जाना है, तो जाओ ना, किसने रोका है, छुट्टी लो ना, किसने रोका है। हाँ हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं और, कहीं ना कहीं किसी को और लगेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे, किसी को बॉस को देखना पड़ेगा कि हाँ यार ये लड़का तो चेंज हो गया। हाँ तो करो ना अपने आप को चेंज, एक ही दुनिया एक ही ज़िंदगी मिली है बड़े भैया, ये दोबारा नहीं आने वाली। और अगर इस ज़िंदगी में वो नहीं किया जिसकी आपको ख्वाहिश है, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो भैया ज़िंदगी में किया क्या। वो कहते हैं ना चाय वही पी, चाय वही जो पी ली, और ज़िंदगी वही जो जी ली, और विस्की वही जो साइड पर रख दी, वीकेंड पे देखेंगे, वीकडे कोई उसका काम नहीं। ऑल राइट विद दैट इट इज बाय बाय गुड नाइट। याद रखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द मैन और द वुमन इन द मिरर। विद दैट इट इज अडियोस गुड नाइट। कल ट्यूसडे मिलूंगा जी 5 to 7 ओनली ऑन फनेशिया।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
9: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: इट्स लॉसन।
12: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
13: इट्स लॉसन।
12: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
14: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल